बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकब्बुर करने लगे। फिर मैं उनको बुलंद आवाज से भी बुलाता रहा, फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा। फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है।

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-8559।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-8569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-32-04-372-0242-46-0100।

0: आर कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री ए बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियूं ऑडियो ए विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी ए इंग्लिश ते खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल ए इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान ए उते मुनक़द थींदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ए ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणन ए प्यारन पुटन जे मुनासिब तालीम ए तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453 स्किन डल ए बेरोनक लगे थी खाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवहाजी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवहा के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

कोटिया के इलाके स्पिन कारेज में कोयले के खान में धमाके सबब चोटी पोहित फौत खान में फाथल अठ जणन के बचाण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएम में इख्तियारन जो चवण है त खान मां वधीक छह मजदूरन जा लाश बाहर कढ़िया विया आहिनि। फौतिन जो अंग वधी चोटी थी वियो आहे। धमाके वक्त 42 मजदूर खान अंदर मौजूद हुआ। सूबाई वजीर मैदनियात शोएब शोरवानी चयो आहे त डुखे हालतन बावजूद रात देर तई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहो। खान अंदर फाथल बेन पोरेतन के भी बाहर कढ़ियो वियो। साने में कंहिंजी भी गलती या कोताही साबित थी त सख्त सजा डि॒नी वेंदी। बलोचिस्तान सरकार पारां हादसे में फौत थियल मजदूरन जे वारसन खे मुआवज़ो ॾियण जो ऐलान। फौत थियल मजदूरन जे वारसन खे 5-5 लख ऐं ज़ख़्मीन खे 3-3 लख रुपया मुआवज़ो अदा कयो वेंदो। बोर्ड ऑफिस में हमास ऐं ॿियनि वेढ़ाक तंज़ीमनि पारां हथियार फिठा करण ऐं इसराइली फ़ौज जे गज़ा मां मरहले वार नेकाली वारो मुआहिदो थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जीअं ई हमास हथियार फिटा कंदो इसराइली फ़ौज गज़ा खां ॿाहिरि वेंदी। मुआहिदो नई फ़लस्तीनी हुकूमत जे क़याम लाइ अहम अघबराई आहे। मुआहिदे ते मुंज़िम तरीक़े सां मरहले वारो अमल दरामद कयो वेंदो। आलमी इस्तेकाम फोर्स फ़लस्तीनी फ़ौज सां गॾिजी ज़िमेवारियूं संभालींदी। हमास सरंगनि नेटवर्क हथियार जो ज़खीरो ऐं हथियार ठाहिण वारो मशीनरी ऐं हंधु तबाह करण समेत फ़ौजी ढांचो ख़तमु कंदी। अमेरिकी इख़्तियारनि जो चवण आहे त गज़ा में फ़लस्तीनी अथार्टी ऐं हमास जे मुतबादल तौर टेक्नोक्रेट हुकूमत जो क़याम ग़ौर हेठि आहे। मुआहिदे ते अमल दरामद कुझु हफ़्तनि में शुरू थींदो। इहो न समझो त इलेक्शन खे चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजे उगती ॻणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, धांधली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर न आहे। मीरपुर इलेक्शन में धांधली जूं वीडियोज़ बि साम्हूं आयूं। अफ़सोस आहे जो सबूत ॾियण बावजूद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुटो चयो आहे त हू पीटीआई जा मम्मी डैडी वारा न आहिनि, हुननि वटि जियाला मौजूद आहिनि। अहिड़ा जियाला आहिनि जन ज़िया तोणे मुशरफ़ जो मुक़ाबलो कयो ऐं ही सभु शींहं जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। पीटीआई दोस्तनि खे बायकाट वारी सियासत छॾणु घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असेंबली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एहतजाज कंदड़ कमीशन क़बूल कनि, इनशाला नसीब थींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी मुल्क जे समूरनि मसइलनि जो हल नवनि सूबनि खे करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट खे ख़िताब कंदे मोहसिन नक़वी चयो त केर मञे या न मञे असांजो निज़ाम तबाह थी चुको आहे। जेसि ताईं नवां सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेसि ताईं शयूं ठीक न थींदियूं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबा या जेको बि नालो ॾियो उनखे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। आम माण्हू नंढी नंढी शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़रे मुल्क हुजण बावजूद कणक ॿाहिरां घुराइणी पवे थी। नौजवाननि जो रुगो हिकु मुतालबो आहे त खेनि मेरिट ते मौकिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में खेनि मौकिया ॾियणा पवंदा। नवां चओ या काकरोच ई गॾिजी उथी पया त सभु कुझु ऊंधो थी पवंदो।

0: बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ संदस जाती राय आए तो कराची ए गवादर वफाक जो हिस्सों होजन घुर्जन सूबन में इंतजामी यूनिट्स डी जी खान के बे शहर से मिलाए सकजे तो लसानी बुनियाद से सूबा ठाया वा तो नव पिंडारो बॉक्स खुल नवा इंतजामी यूनिट्स ठाण पाकिस्तान लाइ सुठो होंद पाकिस्तान में इंदड़ चूंडू नए स्ट्रक्चर तय थी सन थ पीपल्स पार्टी के अगवान नियर बुखारी है तो सूबन के हदन में फेरफार लाए सूबाई असेंबली में ब भांगे टे अक्सरियत से ठहराव मंजूर थियण जरूरी है। ख्वाजा आसिफ पे पैंकी काबीना वजीर आजम से गाल वजीर आजम वट यह गाल आई तो यो पीपल्स पार्टी से गाल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहत

ईरान जो कुवैत में अमेरिकी स्टेट जगहंदन ते ड्रोन ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी फौज चयो त कश्मीर ते रहायशी इमारत ते अमेरिकी हमले जे रद अमल में अमेरिकी वेड़ाक जाल जे मसावलाती निज़ाम ऐं इक़दामनि खे निशानो बणायो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका खे कश्मीर में ईरानी शहरनि ते हमले जी घिरी क़ीमत अदा करणी पवंदी। नौशेरो फेरोज में कोच ऐं ट्रक में टक्कर, हिकु ॼणो फौत। क़ौमी शाहरा ते नूर रिपोर्ट वटि हादसे सबबि फारूक चन्ना फौत, चार ॼणा ज़ख़्मी। मुसाफ़िर कोच शिकारपुर खां कराची वञी रही हुई त हादसो पेश आयो आहे। मटियारी में ट्रालर ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर सबबि नौजवान फौत थी वियो।

0: शहरयार शहर के पुट जहांगीर शहर के मुबैन अगवा केस में नामजद मुख्य जवाबदार राउती के कच्चे वारे इलाके में गिरफ्तार। पुलिस जवाबदार जतोई शहर ए संदस साथी दोदो शहर के गिरफ्तार कयो। कुछ डी अग जहांगीर शहर कच्चे वारे इलाके में मुबैन अगवा थियण बाद कुछ ही कलाकन में बाजियाब भी थो। एक मणु सिंध अमर के नाव मोम जारी। केटीएन न्यूज ए कावस के सड़ से सिंध के मौसमियाती तब्दीली का बचाने लाय वण लगाने वाली मुहिम जारी। मुख्तलिफ शहर में सियासी समाजी धुरन पारा वण लगाने जो सिलसिलो जारी है। सिंध के सरसब्ज रखने वाले अजम जो भी वर्जाओ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी फूज और मॉइस्चर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
3: मेरा आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0302018003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद ने बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने, फूस और मॉइस्चर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

त मुंहिंजे मिठा साईं प्रिय खे परचाइण मोहबत बर्दाश्त खुलूस ऐं वफ़ादारी जेको ख़ूबसूरत इज़ार आहे। इंसान जी ज़िंदगी में रिश्तनि जी अहमियत तमामु घणी हूंदी अथव ऐं उन्हनि रिश्तनि खे मज़बूत रखण जे लाइ कॾहिं कॾहिं पंहिंजी अना खे पासे ते रखी करे मुआफ़ी वठणी या मुआफ़ी ॾियणी पवंदी आहे। सचा प्यार कंदड़ हमेशह उहे चाहींदा आहिनि त संदनि महबूब ख़ुशि रहे ऐं भली उन लाइ खे न पंहिंजो ज़िदी छो न छॾिणो पवे। प्रिय खे परचाइण जो मतिलबु रुॻो नाराज़ महबूब खे राज़ी करणु नाहे, पर दिलनि मां ग़लति फ़हमियूं ख़तमु करे मुहबत एतमाद ऐं कुर्बत खे ॿीहर बहाल करणु आहे। मिठा लफ़्ज़, सुठो इख़लाक़, सचाई, इज़त ऐं ख़ुलूस अहिड़ा वसीला आहिनि जेके कंहिं बि नाराज़ दिलि खे आसानीअ सां मौक़ो फराहम कंदा आहिनि। त शमन अली मीराली बि कुझु अहिड़ा ई बोल चवे थो ऐं अचो त उहे ॿुधी वठूं।

खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: कॉन्टैक्ट नंबर 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। कॉन्टैक्ट नंबर 03013865453।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

जी न मोहब्बत सुञाताई, जोखे पांधन जी न मोहब्बत सुञाताई, रखे ई पाण वट जा नफ़रत सुञाताई। गलती कयम पंहिंजो निंड्रियूं फिटायम, तोखे दिल न ॾियां हा अकुल कोन आयम। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिटनि ॿाहिरनि ॿाहिरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ में भली कार त जिन जिन दोस्तनि हाणे हाणे असांखे जॉइन कयो आहे त उन्हनि खे असां ॿुधाईंदा हलूं त तव्हां ॿुधो था जी ए मोरो एफ एम 88 ऐं जी एफ एम नेटवर्क ऐं समूरे नेटवर्क जूं तमामु स्टेशनूं हिन वक़्तु सां कनेक्टेड आहिनि ऐं तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में बि शामिल थी सघो था। बज़रिए एस एम एस करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं आरो लिखो स्पेस जो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। अगरि तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आहे त असांजी हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ तव्हांजा मैसेज जेके ईंदा आहिनि असांखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। इंटरटेनमेंट में इज़ाफ़ो अची वेंदो आहे, तव्हांजे पसंदि जा सॉन्ग हली वेंदा आहिनि, तव्हांजी खोड़ सारी सजेशन्स अची वेंदियूं आहिनि जेके अगरि तव्हां ॾियणु चाहियो था की सलाहूं की मशवरा ॾियणु चाहियो था प्रोग्राम जे मुतालिक़ या असांजा जेके पुराणा लिसनर्स आहिनि जेके तमामु घणे वक़्त खां वठी जी एफ एम नेटवर्क सां कनेक्टेड आहिनि, जेके जुड़ियल रहिया आहिनि, जेके असांजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में बि शामिलु थींदा आहिनि, अगरि उहे बि असांजे प्रोग्राम हिन प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में शामिलु थींदा त मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी। ऐं अहिड़ा सीनियर माण्हू जेकर असांखे मैसेज ज़रिए पंहिंजी सलाह, पंहिंजी राय ऐं प्रोग्राम खे बहितर बनाइण जे लाइ अञा वधीक कुझु एफर्ट्स लॻाइणियूं पयूं त उहे तव्हांजे सलाह सां लॻाए सघजनि थियूं, त उहे दोस्तनि खे बि असां चवंदासीं त उहे बि पंहिंजा सलाहूं मशवरा असांखे एस एम एस जे ज़रिए ॾेई सघनि था। त मुंहिंजा मिठा ताईं जेको मूं तव्हांखे शेयर ॿुधायो पांधनि जोखी जो शेयर हुयो, हिन में शेयर न बल्कि हिकिड़ी काफ़ी हुई। काफ़ीअ में शायर सची मुहबत, वफ़ादारी ऐं इंसानी रिश्तनि जी अहमियत खे इंतिहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयानु कयो आहे। शायर चवे थो त जेकॾहिं दिलि में इश्क ऐं सचाई मौजूदु हुजे हा त इंसान खे कंहिं बि क़िस्म जे अकुल या दुनियावी चालाकी जी ज़रूरत न रहे आहे, छो त सची मुहबत पाण खे इंसान जी ज़िंदगी जो बहितरीन रहनुमा बणाए छॾींदी आहे। शायर महबूब सां मुखातिबु थींदे चवे थो त मुहबत जी वाट में ॾुख तकलीफ़ूं ऐं आज़माइशूं अचनि थियूं, पर सचो आशिक उन्हनि खे ख़ुशीअ सां क़बूल करे थो। मुहबत इंसान खे सब्र, बर्दाश्त, क़ुर्बानी ऐं वफ़ादारीअ जो दर्स ॾिए थी। जेको शख़्स पंहिंजे महबूब सां सचो हुजे उहो हर हाल में पंहिंजी वाइदे ते क़ाइमु रहे थो। इहो बि पैगाम ॾिनो वियो आहे त नफ़रत, गुरूर ऐं ख़ुदगर्ज़ी इंसान खे तबाही ॾांहुं वठी वञनि था, जॾहिं त मोहबत, आज़ादी ऐं सचाई इंसान खे इज़त, सुकून ऐं कामयाबी अता करे थी।

त मुंहिंजा मिठा साईं, प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उहे बि गॾो गॾु शामिलु कंदा हलंदासीं। त ॾिसूं था कहिड़े भाउ जो मैसेज हिन वक़्तु असांजे पैनल ते मौजूदु आहे। त असांखे लिखे थो भाउ, अस्सलामु अलैकुम गुलाब भाई, कैसे हो? त वालेकुम अस्सलाम भाउ मुंहिंजा, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। अदा जन चवनि था, कैसे हो? शो वी आई पी है, मुझे सॉन्ग सुना दो शाहिद बाबर का। जीअं त शाहिद बाबर ॾाढो सुठो रागी आहे, इनशाला तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो मां सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदो साईं। अदा जन सां गॾु आहे माजिद सोलंगी, फिराम सखर। अदा माजिद, तव्हांखे अदा जन मैसेज जे ज़रिए सलाम बि चया आहिनि, सॉन्ग बि तव्हांजे लाइ डेडिकेट कयो आहे। उमेदु आहे त तव्हां बि ॿुधंदा हूंदा ऐं तव्हां अदा खे रिप्लाई ज़रूरु कंदा। महिरबानी आहे मुंहिंजा मिठा तव्हांजी। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। अदा जन चवे थो प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे, कंपेयरिंग तमामु बहितरीन आहे। महिरबानी अदा, प्रोग्राम खे पसंदि कयो पिया, कंपेयरिंग खे पसंदि कयो पिया, हुनजे लाइ तव्हांजा लख कुर्ब। ऐं तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। अच्छा, इहो आहे केरु? इहो आहे हालाणी खां क़ुर्बान अली ॾेपर। अदा ॾेपर साहिब, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? त बि सही आहे तव्हांजी, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। क़ुर्बान साईं, मुंहिंजी सुर बि थो तव्हां क़ुर्बान। त मोहम्मद आचर ॾेपर उन सां गॾु आहे, सावण खान हाले पोटो। ऐं उन सां गॾु आहे जेको हाले पोटो साहिबु। ऐं अदा जन चवनि था, डेडिकेट कनि था अब्दुल जबार चन्ना खे, ऐं चवनि था असांखे रहमान मुगल जी आवाज़ में कलाम ॿुधायो। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, छो न ॿुधाईंदासीं, तव्हांजो शो आहे। फिल वक़्तु ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो सॉन्ग मुंहिंजे प्लेलिस्ट में आहे, ऐं ऑटो प्ले बि थी वियो आहे, अचो त

राहत फ़तह अली ख़ान जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समा थू त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां सां हिन शो में शामिलु थी सघो था। बज़रिया आहे SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। त अहिड़े तरीक़े सां कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन खे बि गॾो गॾु पंहिंजे प्रोग्राम जी सूंहं बणाईंदे हलंदासीं, छो जो तव्हांजा मैसेज असांजे प्रोग्राम जी बिल्कुलु सूंहं आहिनि। त असां सां गॾु हिन वक़्तु प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे असांजो प्यारो भाउ ॻोठ ग़रीबो ख़ान बेहण, ॻोठ जाड़ो ख़ान बेहण खां आहे चनेसर ख़ान बेहण। चनेसर ख़ान बेहण ॾाढो सुठो माण्हू आहे, दिलरुबा माण्हू आहे, मुहबत भरियो माण्हू आहे, ॾाढी मुहबत ॾींदो आहे असांखे, ॿुधंदो बि आहे, असांजा मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम बि ॿुधंदो आहे, ऐं स्पेशली जेको आहे मुंहिंजी हुन सां तमामु घणी दोस्ती बि आहे, मुहबत बि आहे ऐं प्यार बि आहे। ऐं चनेसर पाण हिकिड़े बहितरीन शाइर जो पुटु आहे। आदा चनेसर, मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे, तव्हांजे वालिद खे, तव्हांजे ब्रादर खे ऐं तव्हांजे समूरनि ॻोठ वारनि खे सलाम चइजो। ऐं जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं निमाज़ ते वञो त असांखे दुआउनि में यादि कजो, ऐं मौला ख़ुशि रखंदव तव्हांखे ऐं आबाद हुजो। असां तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियूं। ऐं अहिड़े ई तरीक़े सां तव्हां असांजो रेडियो ॿुधंदा कयो ऐं असांजे शो में शामिलु थींदा कयो। लख कुर्ब तव्हांजा मुंहिंजा सॼण साईं। त असां सां गॾु आहे अली नवाज़। ऐं अली नवाज़ चवे थो त मूंखे कलाम ॿुधायो रोहफ़ मक्सीअ जे आवाज़ में। त दादा अली नवाज़, जेको तव्हां कलाम जा ॿोल लिखिया आहिनि ऐं सम्झ में कुझु घटि पिया अचनि, ऐं बाक़ी तव्हांखे मां कलाम रऊफ़ मक्सीअ जे आवाज़ में ॿुधायां थो। उमेदु आहे त उहो तव्हांखे पसंदि अची वेंदो ऐं तव्हां मुंहिंजे शो में शामिलु थिया आहियो। मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे ख़ासि तौर ते भलीकार। असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे माजिद सोलंगी फ्राम सखर। चवनि था अदा गुलाब, तव्हांजो आवाज़ ॾाढो मिठो आहे, महिरबानी मिठा साईं, तव्हां बि ॾाढा मिठा आहियो ऐं अलाह ख़ुशि रखंदव। माजिद साईं आबाद हुजो, लख कुर्ब तव्हांजा। सखर वारा असांजा प्यारा जेके दोस्त आहिनि, जे आई अब्दुरहीम जे लाइ किथे गिराज़ुर आहे, त उहो बि ॾाढो मिठो माण्हू आहे। अहिड़े तरीक़े सां वरी तव्हां आहियो, या सखर खां ॿिया काफ़ी दोस्त आहिनि जेके असांखे लिखंदा आहिनि, असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहिनि, ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं लाड़काणे जा दोस्त बि लिखंदा आहिनि, मीरपुर ख़ासि वारा बि अॼु लाइ किथे ग़ाइबु आहिनि, उन्हनि जा बि मैसेज न त अमूमन हिन टाइम ते अची वेंदा आहिनि, ऐं लाड़काणे वारनि जा बि अची वेंदा आहिनि। ऐं अहिड़े तरीक़े सां वरी असांखे ॿुधंदा रहंदा आहिनि असांजा प्यारा दोस्त मीर मेहरापुर स्टेशन तां, उन्हनि जा बि मैसेज ईंदा आहिनि त शायदि अॼु कंहिं कम में मसरूफ़ आहिनि, या वरी जेकर ॿुधी रहिया आहिनि त पोइ उहे तयारीअ में हूंदा दादा गुलाब खे ज़रूरु असां मैसेज कयूं हूंदा त बिल्कुलु दादा तव्हां हुन मैसेज मोकिले सघो था, महिरबानी आहे तव्हांजी। ऐं अदा माजिद जो ई ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आहे, चए थो अस्सलाम वालेकुम गुलाब भाई, VIP शो आहे ऐं शाहिद अली बबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त शाहिद अली बबर जो कलाम अदा ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाईंदुसि ऐं ॾाढो ज़बरदस्तु तव्हांखे शाहिद अली बबर जो कलाम ॿुधाइबो।

0: 5 साल की वारंटी के साथ।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

सऊदी अरब 13 मुल्कन सां गॾिजी बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ लाइ बहरी इतिहाद क़ाइम करे वरितो। पाकिस्तान पारां बि हिमायत बहरी दिफ़ाई इतिहाद जे क़याम लाइ इजलास में 43 मुल्कनि शिरकत कई। सऊदी अरब खे बहरी इतिहाद जो बानी सरबराह बणाइण ते ॻाल्हियूं थियूं। इतिहाद बाबलमंद में ऐं विच ओभर में दिफ़ाई सहकार खे मज़बूत कंदो। सऊदी परडे॒ही वज़ारत मूजिबि हर मुल्क इतिहाद में शमूलियत करे सघे थो।

0: ईरान जो कुवैत में अमेरिकी स्ट्रेट जे खंडन ते ड्रोन ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी फौज चयो त कश्मीर ते रहायशी इमारत ते अमेरिकी हमले जे रद अमल में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज जे हिंगर्स मुवासलाती निज़ाम ऐं गोदामनि खे निशानो बणायो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका खे कश्मीर ईरानी शहरनि ते हमले जी ॻरी क़ीमत अदा करणी पवंदी। कोयटा जे इलाके स्पेन कारेज में कोयले जे खाण में धमाके सबब 34 पोरे दबजी फोत। खाण में फाथल 8 जणनि खे बचाइण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएम में इख़्तियारनि जो चवणु आहे त खाण मां वधीक 6 मज़दूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया विया आहिनि। फोतियुनि जो अंगु वधी 34 थी वियो आहे। धमाके वक़्त 42 मज़दूर खाण अंदरि मौजूद हुआ। सूबाई वज़ीर मदनियात शोएब नौशेरवानी चयो आहे त ॾुखियुनि हालतुनि बावजूद राति देर ताईं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहियो। खाण अंदर फाथल ॿियनि पोरितनि खे बि ॿाहिरि कढियो वेंदो। साने में कंहिं जी ग़लती या कोताही साबित थी त सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। बलोचिस्तान सरकार पारां हादसे में फोत थियल मज़दूरनि जे वारसनि खे मुआवज़ो ॾियण जो ऐलान। फोत थियल मज़दूरनि जे वारसनि खे 5-5 लख ऐं ज़ख़्मियुनि खे 3-3 लख रूपया मुआवज़ो अदा कयो वेंदो। जेकमाबाद में मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल नौजवान जो लाश रखी धरणो। वारसन अली हैदर बुलेटीअ जो लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवणु आहे त पुलिस कूड़े मुक़ाबले में नौजवान खे क़तल ऐं बख़्शल बुलेटीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। 100

दूसरे जो मैसेजेस भी आहिनि उहे बि शामिल कंदा हलंदासीं। जो गुलाम अहमद साबकीअ खां ऐं असांजो प्यारो भाउ अली रज़ा साबकी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो साईं अस्सलाम अलैकुम। त वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा भाउ, मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे तव्हांजे समूरे ॻोठ गुलाम अहमद साहिब जे प्रिय प्यारनि खे बि अस्सलाम अलैकुम ऐं वेलकम। तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो अदा, तव्हांखे स्पेशली मां भलीकार चवां थो। ऐं अदा जन शेर लिखियो आहे त चवंदा आहिनि त माण्हू सभिनी सुहिणा, वाह माण्हू सभिनी सुहिणा, पखी सभिनी हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बुई बहार जी जिया। बिल्कुलु असांजे समाज में के के अहिड़ा बहितरीन शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि, अहिड़ा बहितरीन माण्हू हूंदा आहिनि जिन मां हर वक़्तु बहार जी ख़ुशबू मिलंदी रहंदी आहे। बहार जी ख़ुशबू जेका आहे न उहो ख़ुशियूं आणींदी आहे। इन जे करे असांखे सभिनी खे इहो ई घुरिजे त असां पंहिंजे पाण खे बहार जी ख़ुशबूअ वांगुरु कयूं। जेको बि माण्हू असां सां मिले उहो इहो शेर ज़रूरु चए त माण्हू सभिनी सुहिणा, पखी सभिनी हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बू बहार जी। त महिरबानी अदा अली रज़ा, मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे इहो जेको शेर आहे इहो डेडिकेट कयां थो तव्हांजे समूरे ॻोठ वारनि खे। महिरबानी मिठा। ऐं कामरान लगारी असांखे मोरो खां ॿुधी रहियो आहे अदा। कामरान पहिरियों दफ़ो तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, तव्हांखे बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चवां थो। अदाजन जलाल चाणी जे कलाम जी फरमाइश कई आहे ऐं हाज़िर मुंहिंजा मिठा। जलाल चांडियो असांजे ज़िले मुशरफ़ फिरोज़ जे नंढड़ो हिकिड़ो शहर जेका यूनियन काउंसिल आहे फुल सां हुनजो तालुक़ु हुयो, अॼु बि हुनजो औलाद ॻाइण सां तालुक़ु रखे पियो ऐं उनजा पुट ॾाढो सुठे तरीक़े सां ॻाए रहिया आहिनि। पर जलाल चांडियो जे लेवल ते ॻाईंदो हुयो ऐं जलाल चांडियो जी जेका मक़बूलियत हुई उहा मक़बूलियत उनजा पुट माणे न आहिनि सघिया, पर ईअं बि नाहे त का हुननि मक़बूलियत बिल्कुलु न आहे माणी न, हू मक़बूलियत हू बि माणे चुका आहिनि ऐं ॾाढा सुठो ॻाईंदा आहिनि ऐं सॼी सिंध छा पूरे पाकिस्तान में हुनजे प्रोग्राम में इनवाइट बि कयो वेंदो आहे ऐं हू ॾाढा राव ख़ुशि वेंदा आहिनि। वॾी ॻाल्हि हुननि जी इहा आहे त हू पंहिंजे वालिद वांगुरु तमामु घणा मुहबत भरिया माण्हू आहिनि। त महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। कामरान साईं भलीकार तव्हांखे चऊं था। रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबाणी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो अदा, महिरबानी भाउ। ऐं अदा जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा, त वालेकुम अस्सलाम चवंदा। मेहरापुर खां मेहरापुर वारनि खे यादि आयो, जी हा बिल्कुलु अदा साईं, मेहरापुर वारा बि मूंखे यादि आहिनि। ॾिसो तॾहिं त मां मेहरापुर वारनि जो नालो खयो न मुंहिंजा मिठा साईं, मूंखे जेकर मेहरापुर वारा यादि न हुजनि। शाहिद बबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे, हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं। शाहिद बबर तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, तव्हां दिलजाए कयो। ऐं अदा आबिद हुसैन स्पेशली मां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम

हमीरपुर खां असांखे लिखंदा आहिनि 78 मोरी खाना जा हमीर चंद किश्वर कुमार पवन कुमार ऐं टेलर मास्टर आहे हीरा लाल ऐं हुन सां गॾु आहे अरबाब अली त अदा साईं तव्हां मूंखे बिल्कुलु यादि आयो मां तव्हांजो नालो न खयो बल्कि मां ईअं चयो त मूंखे मीरपुर वारा दोस्त लाइ किथे हलिया विया आहिनि ऐं महिरबानी आहे अदा जन चवनि था हाउ आर यू अदा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हांजूं दुआऊं आहिनि ऐं चवंदा सलाम त वालेकुम असलाम मुंहिंजा भाउ महिरबानी ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तव्हां अहिड़े तरीक़े सां असांजे शो में शामिलु थींदा रहो त हिकिड़ो ॾाढो दिलशीर थी वञे जी आवाज़ में मूं वटि कलाम आहे छो त

दिलशर्ती मुझे खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारे सुंदर समातूं तो मुझे मिठा सही तमाम भी दोस्तों कुछ मैसेजेस हैं वे पंज प्रोग्राम में शामिल कंदा हूं तो शहबाज़ अली पंज प्रोग्राम बुधी रहा है गोठ माड़ी का अदा शहबाज़ ता के मां पंज प्रोग्राम में भलीकार चवां तो पर तो मुझे प्रोग्राम में शामिल थे आयो लख कुरब लख एहसान आवां जा गोठ हाजी मोहम्मद शरीफ डेपर खां हालणी जी वेझो हाजी मोहम्मद शरीफ डेपर जो गोठ है जिथा का असा के बुधी रहा है वाजिद अली डेपर अरमान अली डेपर जिशान अली डेपर चवंदा अहमद मुगल जो असा के कलाम बुधरा हाजिर मुझे मिठा सही तुम्हें मैसेज आया तक अहमद मुगल जो जरूर कलाम बुधाइस तुम दिल चाय कर असाजे प्रोग्राम ही असा गड है कड़ो भा चवे तो असलम वालेकुम भाई जान आपका शो नाइस है पनो अकल खां सैयद इमदाद अली शाह बुखारी साहब साईं साईं मुझो बिस्मिलायूं खुश हो ठीक हो तबे सही है तवाजी वालेकुम असलाम मां बिल्कुल ठीक ठाक आया मेहरबानी तमा सने शो के पसंद करे रहया हो अदाजन जा दोस्त हैं गुलशेर मंगरियो मोहम्मद ताहिर लुंड जवार मोहम्मद बचल शबाणी मोहम्मद दिनू सूमरो अदाब तवाजा बचल शंबाणी साहब तो मैसेज सवेल कयो हो जरूर वो शो बुझी रहा है बाकी मोहम्मद ताहिर लुंड बुधे पे न पे बुधे का खबर ना है अगर बुधन हों तो तवाजा सलाम उन तोड़ी पहुंची पे आइन त मेहरबानी आए मुझे मिठा साईं तवाजा कुर्ब जो तवा असाजे प्रोग्राम में शामिल थे आयो मोहम्मद यासीन गुदारो पंजे प्रोग्राम बुझी रहो है मुख्य पक है सकरण का बुधन है असा के चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा वालेकुम अस्सलाम अदा कें आयो अदा मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया ढो वी आई पी लगो पे आया तुम कें आयो ठीक है तो सही है तवाजी अदा यासीन तुम फरमाइश कई है तो मुख्य फोटे सरदार जी कलाम बुधरा तो हाज़िर

मुझे मिठा अथई छो न तव्हांखे फोटे ज़रदारी जो कलाम ॿुधाईंदासीं। बिल्कुलु तव्हांखे फोटो ज़रदारी जो बि कलाम ॿुधाईंदासीं। त अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजा साईं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। ऐं शामिल थियण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। त रऊफ़ नक़वी जी ख़ूबसूरत आवाज़ आहे, अछो त हुनखे इंजॉय कयो।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत।

0: प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-8591
1: छो परेशान आहीं?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
3: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम लोग दबे तरह सभी मुझे मिठन बैरन भारत में बेरन के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में भली का आता है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती तमाम जी एफ एम नेटवर्क का मुझे रहा आयो दोस्तों जो कुछ मैसेजेस भी आए वो भी पांच प्रोग्राम में शामिल कह हलूँ सो तसंद जहाँ सॉन्ग भी इलाही सारा वो हलाना तो अस प्रोग्राम में गए केर है अदो अदो चवे तो गुलाब भाई सॉन्ग सुनाओ मुमताज मौलाई का हाजिर था मुमताज मौलाई जो तलाम रहा डॉक्टर जवार मोहम्मद बच्चल शंबाणी के डेडिकेट करे तो मोहम्मद ताहिर लुंड के गुलशेर मंगरियो राशिद लाखो रियाज जिसकानी एम डिनू सुमरो के हाजिर था पसंद जो कलाम जरूर मुमताज मौलाई जहाँ खोड़ सारा कलाम बहरहाल मर्जी से कलाम बुधाया तो मुमताज मौलाई जो भी अला कह पसंद अची वो गोट खमीसो खान डायरी का मोहरम लगारी प्रोग्राम बुध रो है मोहम्मद लगारी अदा खमीसो खान डायरी वा दोस्त तुम प्यारो मजहर भी रहे तो बुध है तो वो ठीक ना है उनकी तबियत सही ना है अला से खुश रख सलाम चोस मुझा तमाम घना असा दुआ घूम तो अल्लाह तला उनके सेहत त फरमाए असो पुरानो लिसनर है असाजे रेडियो से इलाही उनजी मोहब्बतू आन कनेक्टेड रहो है कमीसो खान डायरी जो नेकमर राय मदर डायरी साहब।

ऐं तव्हां शामिल थी करे बहितर तरीक़े सां लिखी करे इहे शयूं जेके आहिनि उहे असां मोकिले वठिजो। तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी। अलाह साईं तव्हां ख़ुशि रखे। दीदार मरी ॻोठ माड़ीअ खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। महिरबानी अदा दीदार, ख़ुशि हुजो, सलामत हुजो।

प्रोग्राम जो वक्त पहुची आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरियों तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखिजो। अॼु जुमे जो भलारो ॾियारो आहे, निमाज़ ज़रूरु पढ़िजो ऐं निमाज़ दौरान असांखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो। दुनिया क्लाइमेट्स चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। हर प्रोग्राम में मां तव्हांखे चवंदो आहियां तव्हां बराए करम पंहिंजे तरफ़ खां वण ज़रूरु पोखियो। ॾिसो हिकिड़ो वण कटण में त अधु कलाक या कलाकु लॻंदो आहे, पर उहो वण वरी ॿीहर तयार थियण में 10 साल लॻी वेंदा आहिनि। उनजे करे जेकर तव्हां अॼु खां ई इहा तयारी कंदा आहीं इन भरपूर मुहिम में हिसो वठंदा त ईंदड़ 10 सालनि खां पोइ असांजी सिंध बटारी सरसब्ज़ थी वेंदी, शादाब थी वेंदी ऐं इहा जेके गर्मीअ जा अहिड़ा सूरत हालूं आहिनि उहे मुकमल तौर ते ख़तमु थी वेंदियूं। त छा कंदव तव्हां पंहिंजो वण हिकिड़ो ज़रूरु पोखींदव ऐं उहो वण पोखे करे पोइ वरी तव्हां मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदव ऐं उमेदु कयां थो त मुंहिंजो इहो चवणु तव्हां ज़रूरु वठंदा। पंहिंजे नियाणियुनि खे पुटनि खे तालीम ज़रूरु ॾिजो ऐं निमाज़ जी पाबंदीअ सां गॾु नबी करीम सलाहु आल वसलम जे मथां दुरूद कसरत सां पढ़िजो ऐं उन दौरान मूंखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि कजो। वीदे वीदे हदीका कयानी जो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, शाद लती भिटाई जो शायदि 250वीं शायदि इहा वर्सी हली रही आहे। त उन मुनासिबत सां हीअ हदीका कयानी जो बि सॉन्ग प्ले कयो वञा थो। इंशाल्लाह ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ जुमे ते 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं पाण कढंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही अलाह गहवा।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: शाइनी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दुश्मन कुवतों बलूचिस्तान के गैर मुस्तकिम करण जी कोशिशों करे रहियूं आहिनि। सूबे में सूरत हाल कुझु ख़राब थी रही आहे। मुल्क में अजीब साज़िश थी रही आहे। सियासी जमायतनि खे चवां थो, सियासत खे दहशतगर्दी सां न गंढियो। रियासत खे सियासत न पर रियासत खे रियासत जी ज़रूरत आहे। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुक्टीअ जी एटीएम ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड खे ख़िताब। सरफराज भुक्टी चयो त बलोच कौम खे अहिड़ी जंग तरफ़ धिकियो वियो आहे जंहिं में हासिल कुझ न थींदो। बलूचिस्तान जा माण्हू रियासत सां गॾु बीठल आहिनि। राह अॻिते हलण वारनि लाइ असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु इंच बि पोइते न हटंदासीं।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-569
2: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आहिन
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: शेख हयात जी सिस्टम से क्या तो फरमाइश वसार कोशिश कभी तो पूरी कर।

जनाब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे जो है नंबर पे जिस पे आप हमेशा हमें कॉल करते हैं। हम आपको पहला गाना सुनवाएंगे। नंबर है 0300 0113488। जनाब जुलाई की छुट्टियां एंजॉय करके, खैर मैं गाना प्ले कर रहा हूं आपके लिए, तो आप इस गाने को जरूर सुनिएगा। आसिम अजहर का बहुत प्यारा सा गाना मैं आपके लिए प्ले कर चुका हूं, तो आप इस गाने को सुनिएगा। सुनते रहिएगा GFM88 नेटवर्क से, आपका अपना शो है आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी। शाम के 7 बजे तक मेरे साथ रहना है, आपने मुझे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो एंजॉय कीजिए ये सुपर हिट सम फेवरेट सॉन्ग।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन. अजहर, आसिम अजहर का बहुत प्यारा सा गाना आपने सुना और वापस आ चुके हैं आप मेरे साथ एक बार फिर से. तो जनाब, अब आपको बिल्कुल देर नहीं करवाते, आपकी कॉल लेते हैं क्योंकि आप भी बड़े बेसब्रे, बड़े उतावले हुए जा रहे हैं हमसे बात करने के लिए और लिसनर्स तक अपने जज्बात पहुंचाने के लिए. हमारा नंबर है जनाब, क्या हमारा नंबर है जनाब? 03000113488. तमामो के कॉल करे सको था आई शाम 7 बजे ताई मा तमाम सभी दोस्त संग आया वठो था. शोजी पहली पहली कॉल दिसो था लाइन ते आहे आखिर के. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब. केर असा सबनी सा गडई किथा प्या गलायो? पनो अंकल खाई दर भा, केड़ा हाल चाल? तब ठीक ठाक आयो? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला. दादा तमा यू बुधायो त तमा छा कंदा आयो मुजा जानी? माशाल्लाह माशाल्लाह. गर्मी में कोई प्रॉब्लम तो कोन थींदी आहे? गर्मी में पोख करण ॾाढी ॾुखियाई थींदी हूंदी? अच्छा, त छा था पोखियो हिन वक़्तु ज़मीन में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. त घणो हे टाइम खाईंदी, माना घणे अरसे में तयार थी वेंदी पोइ? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. इंदर साहब, इहो ॿुधायो त तव्हां असांजे शो में आया आहियो, तव्हांखे कहिड़ो गानो अॼु ॿुधणो आहे? शमन मीराली जो कोई बि तव्हांखे ॿुधायूं था इनशाला. कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो? थैंक यू सो मच इंदर भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो. अदा थैंक यू. हमारे साथ थे जना बहुत प्यारे से इंदर भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं. आई इन गर्मा गर्मी में जेका है, तमा अगर लॉन्ग ड्राइव से आए हो या शहर का बाहर निकल आए हो या पांजे शहर में बनो था, तो तमा जनाब पांजी गाड़ी में असा के हलाए करे यानी कि जी एफ एम एच ट्यून करे असा के बुधी सको था इजीली. आई जनाब पांजी फरमाइश भी पूरी कराए सको था. नंबर है जनाब 03000113488. इन नंबर से तमा असा के कॉल कियो आई जनाब पांजी फरमाइशी सॉन्ग बुधे सको था, पांजे हाल दिल असा के बुधाए सको था. आई जनाब टेंपरेचर जी मां तमा के गाल कई, टेम्परेचर इन वक्त 41 सेंटीग्रेड हले तो. शाम 6 बजे कुछ मौसम सुठो थियण जो अंदेशो आहे, प्रिडिक्शंस आहिनि महकमे मौसमियात जी. हाणे ॾिसूं था त शाम 6 बजे मौसम कीअं थो थिए, छो त बारिश जी प्रिडिक्शन त मौजूदु आहिनि ऐं बारिश करे थी थी असांखे ख़बर कोन्हे पर थींदी ज़रूर इनशाला. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: केर अदा सां सभिनी सां गॾु? इरफान भाउ सखर खां. कहिड़ा हाल चाल आहिनि इरफान भाउ, छा कंदा आहियो?
1: अलहमदुल्ला.
0: छा कंदा आहियो, कहिड़ो कमु कार कंदा
1: आहियो?
0: तव्हां माना हिकिड़ो इहो बि वॾो कमु आहे त कमु न करण बि वॾो कमु आहे. छा सोचियो अथव त छा कंदो माना? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही आहे सही आहे. इरफान भाई, इहो ॿुधायो प्रोग्राम तव्हांखे कीअं थो लॻे? जबरदस्त प्रोग्राम में हाणे असांजे पहिरें भाउ जी फरमाइश सां प्ले कयूं था शमन अली मिराली जो गानो, त तव्हां कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? पंहिंजे दोस्तनि जे नाले. ठीकु आहे इरफान भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो था. थैंक यू. हमारे साथ इरफान भाई फ्रॉम सखर, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. खैर जनाब, असां गाल कैसे मौसम जी, त मौसम छा थींदो आहे जनाब? मौसम गरम गरम लॻियो पियो आहे, छा कयूं हाणे. पर मौसम खे गरम करण में असांजो इलाही हथु हूंदो आहे, छो त मौसमियाती तब्दीलियूं जेको आहे पूरी दुनिया ते रोनमा थींदियूं आहिनि, पर असांजे जॾहिं ते थींदियूं आहिनि त पोइ असां बिल्कुलु विफरी वेंदा आहियूं. असां वण बि कटे छॾंदा आहियूं, असां सब्ज़ो कटे छॾंदा आहियूं, माना इन में अधु हथु असांजो हूंदो आहे, त असां कीअं माहौल खे ख़राबु था कयूं. असां माहौल खे ख़राबु कंदा आहियूं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पोइ गर्मा गर्मी वधी वेंदी आहे, मौसमियाती तब्दीलियूं असां ते तमामु घणो बुरो असर विझंदियूं आहिनि. असांखे खपे त असां वण जेका आहे लॻायूं ऐं पंहिंजे माहौल खे साफ़ु सुथिरो कयूं. वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं ॾिसूं था लाइन ते असां सभिनी सां गॾु केरु आहे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मिठा, केरु असां सभिनी सां गॾु? सॉरी, मूंखे आवाज़ तव्हांजी सम्झ में आई. तव्हांजो नालो छा ॿुधायव था? सूमर महर. सूमर साहब, छा हाल आहे पनवाकल में, छा कंदा आहियो? जी जी, हलो. ओए अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप थी भैया है, पर कोई गाल ना है, तवां संगे कॉल करे सको था जनाब असा जे नंबर ते। आई अगर कंजी बर्थडे आ है, कंजी शादीवादी भी थे थी, तो तवां संगे कॉल करे सको था। आज कोई तवां जे लाई स्पेशल डे आ है, त पो असा तवां संगे कॉल करे सको था, डेडिकेशन करे सको था, आई पांजे प्यारन के जनाब गाना भी डेडिकेट करे सको था। खैर जनाब हम बात कर रहे थे मौसमियाती तब्दीलियों की, तो मौसमियाती तब्दीलियां जो है पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रही है जनाब, और इन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जनाब बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह ये चीजें हमारे मुल्कों पर, हमारे शहरों पर असरअंदाज हो रही हैं। तो दरख्त लगाइए, सब्जा कर दीजिए पूरे सखर को, और नीम के दरख्त जो है लगाइए, क्योंकि वो बहुत गर्मी ऑब्जॉर्व करते हैं और बहुत अच्छा फील देते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अदा मुझा मिठा केर असा सबनी सा गद मिसरी गोठ का मिसरी जेड़ा मानू असा सबनी सा गद मौजूद आइन, केड़ा हाल चाल है नदा?
2: सब खैर आला जैसा नी अब्दुल्ला शाह गाजी के पास में हूं, तो मैं तो बात याद करे बेटो।
0: वाओ अब्दुल्ला शाह गाजी, तुम घूमो था माना काची? वाह यार गुड, तमाके तमाम घड़ी मुबारक हुए थे, तमारे सुठे मजार थे मना सिक्योरिटी भर्ती थे आयो, तो पो जेका है कराची जी आवाम की मना जोरा वारा या मना हली में दिया ता जे शरण ते? दुआ दे हमेशा तरक्की माणो, हमेशा खुश रहो, असा भी दुआ जरूर कजो। जी जी जी जी

जी सही सही सही।

सिलाई कंदा आयो सिलाई हेलो

जो हेलो सुमेरा सांसद निशंकर हुई ना आप भाई सुमेरा जिला

0: उत्पाद बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एतमाद, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03075925120।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808743।
5: अपना शहर अब मेहरापुर और मेहरा

0: सां ॿुधा कनेक्ट कराए
1: मरी वियासीं मरी वियासीं हींअर मां शिकायत थो कयां मथे ज़ुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते असांजी आवाज़ लड़काणे में पुॼायो जीअं बि करे
0: सलाम
1: लड़काना इज़ नॉट कनेक्ट।

0: जी मूंखे लगे तो तना सबनी सगत वही जतो
1: सोना साईं बलोचिस्तान जे हवा में सिंध बुलाट रखो नजीरा मन जखरानी
0: नजीर भा जखरानी भा केड़ा हाल चाल है ता जा
1: अलहम साईं जा मेहरबानी तवा खुश आयो बे खैरा हते अरसे को बाद आज तवा जो प्रोग्राम इश्राक न्याजी जा तमाम यादगार लम्हा सगे याद आ जदे 692 हले ड्रोन में तवा जो प्रोग्राम आदा तवा के याद हुंदो अले ना सा तवा जो पुराना लिसनर है
0: हां बिल्कुल बिल्कुल बलूचिस्तान वाला मुजा तमाम घणा पुराना लिसनर है मुके तमाम घणो चंगी तरह याद है ता इलाही कॉल्स इलाही लेटर्स इलाही ईमेल्स इंदियो असंके दादी खुशी दी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुबह सुबह जे पार में तवा जो प्रोग्राम तमाम जबरदस्त होंदो हो उनको बाद पंजे को छे सते प्रोग्राम अज वरी तवासा लाइव कॉल में अज तवा 88 में आया वे तमाम खुशी थी रहे है अज तवा जो हवा हवान में आवाज साईं सिंध बलूचिस्तान में अगर तवा के एतबार ना छे तवा के बुढाई
0: वाओ थैंक यू सो मच यार बलूचिस्तान जी हवाओं में असांजी आवाज हली थी तवा जो तमाम घणो थैंक्स तवा छा कंदा मुजा प्यारा भा
1: सोना साईं इन टाइम तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं
0: हाँ कम कार कहिड़ा कंदा आहियो
1: सर ज़मीनदारो आहे ज़मीनदारी बि आहे हारपो बि कयूं था
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह इहो ॿुधायो मौसम जेको आहे बलूचिस्तान जो केतिरो सोणो थी वियो आहे या गर्मी अञा ताईं आहे
1: सर गर्मी त वॾो शो हुयो अॼु वरी बलूचिस्तान में हवाऊं हलनि थियूं सोणा थधियूं हवाऊं
0: असांजे लाइ बि दुआ कयो त हिते थधिकार थी वञे कोई हवाऊं हलनि कोई गर्मी घटि थिए
1: अला करे मौसम हिकु ई आहे सोणा साईं मौसम बिल्कुलु हिकु ई आहे तव्हां दिलि में न कजो त मौसम बिल्कुलु हिकु ई आहे अलाह सां बि हिकु आहे हुन जा रसूल बि हिकु आहे हुनजो हवाऊं बि हिकु आहिनि
0: बेशक बेशक बेशक बेशक इहो ॿुधायो त तव्हां अॼु एतिरे अरसे खां पोइ मुंहिंजी कॉलिंग शो में आया आहियो मां फौजिया सुमरो जो गानो थो प्ले कयां ज़बरदस्त हिकिड़ो
1: ऐं तमामु बहितरीन अगाड़े जेको आहे सो असांजो मंगरियो दोस्त संग्रह जेको आहे सो फरमाइश कई नज़ीर अहमद मंगरियो साहब हुनजो बि कॉल मां ॿुधुमि सुणा
0: जी जी जी जी इहो गानो हाणे तव्हां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
1: हा मां इशफाक न्याज़ी जे नाले कंदुसि ऐं सैयद ज़ाहिद शाह जे नाले ऐं संग्रार में असांजो पीरीं प्यारो दोस्त ॿुधी रहियो आहे छो नज़ीर अहमद मंगरियो साहब
0: जी जी जी
1: दरवेश खान गुलाटो अब्दरूफ पंचरी वारो हुन खां अलावा इरफान जखरानी साहब जिते जिते बि मुंहिंजो आवाज़ वञे थो समूरे पीरी प्यारनि खे मुंहुं पारां खोड़ सारा सलाम ऐं अरबेले चाचड़ खे पीसी शाबान चन्न खे ऐं समूरे पीरी प्यारनि खे मुंहुं पारां खोड़ सारा सलाम मुंहिंजा सोणा
0: वालेकुम अस्सलाम पंहिंजो नालो हिते ॿीहर ॿुधाईंदा हलो
1: सर नज़ीर अहमद जखरानी सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर वारो
0: थैंक यू नज़ीर जखरानी साहब सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर वारा हमेशा खुश हुजो ऐं खिलंदा मुस्कुरांदा रहो थैंक यू
1: अलाह ख़ुशि रखंदो इहो आख़िर में अलाह तव्हांखे आबाद कंदो आख़िर में असां
0: नज़ीर में जखरो
1: नज़ीर अहमद जखरानी नज़ीर अहमद जखरानी नज़ीर अहमद मंगरियो
0: नज़ीर अहमद मंगरियो बि नज़ीर अहमद जखरानी भाभी ॿिन्ही जा नाला सेम आहिनि पर कास्ट डिफरेंट
1: आहे जी सर तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु गूंजे थो सिंध बलूचिस्तान जे बॉर्डर में
0: थैंक यू सो मच आई लव यू दोस्त पंहिंजो नज़ीर अहमद मंगरियो और हमारे साथ मौजूद थे दोनों का कंफ्यूजन हो गया मुझे कास्ट अलग अलग थी लेकिन नाम दोनों के सेम है जनाब दोनों ही हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और बहुत अच्छे से लिस्टनर हैं जो कि इतने पुराने हमारे लिस्टनर हैं जो कि हमें गौर से सुनते हैं और सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर हमें सुन रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए जनाब जब आप हमसे इतना प्यार करते हैं और इतना हमें रिस्पेक्ट देते हैं और इतने प्यार से सुनते हैं तो जनाब जब इतने प्यार से सुना जाए तो बहुत मजा आ जाता है ना तो अब देखते हैं हमें प्यार से कौन कॉल कर रहा है लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: आए हाय लगता है इरफान हमारे साथ मौजूद है
2: लग तो ऐसा रहा भाई
0: खिबड़ी भिट वाले है ना खिबड़ी भिट होता है ना
2: नहीं आपको पता है साहब भाई
0: नहीं
2: सबसे
0: क्या क्या आ गई सॉरी
2: 15 और 16 में जब न्यूज चलती थी ना एटीएच पे
0: हाँ हाँ
2: तो जो तो मेरा न्यूज
0: पर अभी लाइव पढ़ता था भैया उस वक्त
2: तो
0: वो उस वक्त मेरी सिंधी थोड़ी टूटी फूटी थी ना थोड़ी अच्छी हो गई है पानी सिंधी जो मां असा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करायो एआई का हा छो त मुंहिंजी सिंधी ठीक करण कंहिं बि डॉक्टर जो कमु न हुयो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो कमु आहे मुंहिंजी सिंधी ठीक करण अलहमदिल्ला मुंहिंजा प्यारा भाउ इहो ॿुधायो तव्हांजा ॾींहं कीअं था गुज़रनि ऐं मुंहिंजे बग़ैर एतिरा जुमा कीअं गुज़ारिया व
2: बस तव्हांजी यादि में गुज़ारियूं पिया
0: अच्छा
2: अॼु पुछो त मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो था
0: अॼु
2: तव्हां पुछो त मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो था
0: हा हा बिल्कुलु ॿुधी आहे
2: तव्हांजे प्रोग्राम में
0: अच्छा मुंहिंजे ख़्याल में त इहो लॻे थो त अॼु जेका हवाऊं उहा सिग्नल खणी था अचनि
2: बिल्कुलु अशाक भाउ कुझु क़िस्म बि आहे मौसम
0: बिल्कुलु
2: हिसाब थी वेंदो आहे जो असांखे ईरान जा ऐं चीन जा बि स्टेशन जेके आहिनि लंबा ॿ लंबा ॿुधण में एफ एम ते ईंदा
0: आहिनि बिल्कुलु

0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक चाहता, बिल्कुल
1: ठीक
0: कंफ्यूज थी विया सिग्नल ते कें कें सां खणी अचूं कें कें न खणी अचूं
1: बिल्कुल
0: वाह वाह वाह कोई गाल नहीं भला तुम असा की कॉल तक ही आ ना आई तुम सा गालायो भी पिया त यो बुधायो फौजी सुमरे जो गानो हलाइन तुम ब्रेक जी फौरन बाद कें जे नाले त करना चाहो
1: फौजी सुमरे जो सॉन्ग पसंद मोदी लायो
0: केडो
1: 88
0: ना वो भलो भलो गाना तब नजीर भाई फरमाइश कई आए कहीं हथ हिलाया त घोड़ा किरी पिया
1: कैसे सलाम सिस्टर मिसेस अली हैं सिस्टर दुआ खान फौजिया फरजाना राय सुमरे मंताज सुमरे हुसैन बख्श तो आप इस गुलाम अहमद साबल नजीर मंगरियो और बचल चमानी जेके दोस्त बदन था सबनी के इरफान अली से बुकरा खुरा सर सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम पंजो खास ख्याल रखो इरफान भाई थैंक यू सो मच थैंक यू चलते हैं कदत कमर्शियल ब्रेक की जानिब जनाब फौरन और इसके बाद फौरन आप जबरदस्त गाना सुन पाएंगे फौजिया सुमरे की वॉइस में
2: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जीएफएम 88 नेट

0: वो तगड़े हो गए हाँ बिल्कुल मोटे छोटे हो गए तो उनका यूनिफॉर्म छोटे हो गए, अचानक से पता चल गया वालदैन को।
1: नहीं नहीं
0: अच्छा गुड है, वेरी कॉपियों होमवर्क कंप्लीट हो गया आपका?
1: बिल्कुल
0: वेरी गुड वेरी गुड।
1: आप चक्कर लगा रही थी, अब आप एक किलोग्राम करने।
0: मैं क्या कर रहा था सॉरी?
1: मतलब चक्कर लगा रही थी छुट्टी पे।
0: हाँ मैं छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा था ना, आखिर मेरा भी तो हक है, मैं गरीब का मुझे जज्बाती हो गया हूँ मैं मुझे रोना आता है जब कहते हैं कि आप क्यों चले गए थे, मैं भी तो इंसान हूँ आखिर
1: अच्छा आज मुझे प्रोग्राम करने जरूर आएंगे क्योंकि छुट्टियाँ पूरी हो गई।
0: आपकी छुट्टियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल जनाब अच्छी बात है, और मैंने आना था आज तो मैं इसलिए आ गया इंशाल्लाह। अब जाहिर सी बात है छुट्टियां नहीं होंगी तो हम छुट्टियां भी नहीं करेंगे और आपके प्रोग्राम में रेगुलर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी प्यारी सी बहन, मैं फौजिया सुमरो का गाना प्ले करूंगा, किसके नाम करना चाहती हो?
1: अच्छा, भाई के नाम।
0: बस
1: हाँ
0: चलो ठीक है, जाते जाते बारिश की दुआ जरूर कर लेना कि बारिश अच्छी सी हो जाए और सबके लिए रहमत का बायस बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जनाब बहुत प्यारी सी हमारी लिस्टनर, बहुत प्यारी सी बहन जो हमें हमेशा कॉल करती है लेकिन अपना नाम नहीं बताती हैं। कोई बात नहीं जनाब, आप हमारे साथ हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब केर हमारे साथ, केर हसन सबनी सा गद
2: का मां वफा अब्दुल वहीद जतोई तेटी शाबिलो ताल को जलो सखरा भाषा का।
0: अच्छा वहीद बाम ताजी आवाज आने सेम नथी लेकिन तो तब जेको हिकड़ो पेरो पेरो दोस असा सिंध बलूचिस्तान जे बॉर्डर कायो उन जी आवाज ताजी कहां जड़ी पे लगे?
2: हां नजीर
0: पर ताजी आवाज ता जड़ी न पे लगी हाने, आज छो भला?
2: बस छाए त वरी मौसम जे हिसाब दा थदा मिठा पियो था नी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सही सही
2: इन में कुछ गले जी ठक ठक थी जी।
0: हां माने गले में ताजी वधिक ठक ठक थी भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल यार भाई शबा यो असल में नंढड़ो अरदा ते दी लंबी जुदाई असा सच पुछो तो जमी ते असा हर जमी ते चेक कंदा रे पेरी तो महरम महीनो
0: जी जी
2: वरी महरम महीने को बाद में असा जो मत हाणी अचे पर वडी लंबी जुदाई दा करे वनी
0: यार इन वक्त माना इन टाइम जो है ना इन मोकलन ते मां वाकई लंबी जुदाई करी हुम छो तो मां करीब एतरो कराची में रहयो कोन आया पर इन वक्त मुझे दिल लगी हुई मां वरी घुमण फिरण में पूरो हुयम तने लाय वापस अचन लाय रूह भी कोन पे कई।
2: अच्छा
0: हां पर वरी मोटी आस
2: हां गस्त टूरन ते हो असा ते बुद्ध नड़ बेटा ते क्यों
0: बस दा सॉरी पर हाने ये न कंदा से इंशाल्लाह ता सा गड रेगुलर इंदा से।
2: असल में ता बुदा तन बजाज क्या तन 88 जो सतो किया
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब मस्त लगा प्यान सब एवन लगा प्यान।
2: असल में मां नडरी शायरी बुधाई दम पो अले केड़ो कला बुधाई दो
0: मां फौजे सूरज जो गानो बुधाई दम करी जो लगला पर मां अन्य प्ले न करे सकवा ता शायरी।

0: शहरी चवनि त बेवफ़ा सां नी हुला तो ॾींहुं हुन जातो बेवफ़ा सां नी हुला तो ॾींहुं हुन जातो रोई रोई कारो वेस पातो चवे पियो मां तोखो काॾे न वेंदुसि थोरो लिखाए वठी खातो जी भाई खातो न शहर जे जान जो या कंहिं ट्रेक्टर जो
1: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु
0: खातो चई वरी आख़िर ते काॾे गैब थियो कुझु मां भाई दोस्त विया
1: आहिनि
0: मुंहिंजो भाणेजो आहे रफ़ीक जत गोली मार सखर खां पोइ ॿुधे थो हले न
1: ज़रूरु
0: तंहिंखां बाद में मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतो मुंहिंजो भाटियो आया त मां जतो ई बागर जे खां आस बि चाचड़ अथव लाड़काणे खां
1: अच्छा
0: बाक़ी हाणे जेके आल टाल ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वही त जतो पारां सॼे सथ खे सलाम कंदा रहंदा
1: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वफा भाई साहब पांजो खास ख्याल रखजो
0: ओके
1: थैंक यू जी जनाब अब हम चलाते हैं फाइनली फौजिया सूरों का बहुत प्यारा सा गाना नजीर भाई की फरमाइश पर सुनिए और हमारे साथ रहिए

0: 34 नजगर लस्टिगरी कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
1: रابطے لائے حاکم علی جسکانی
2: 03013992836
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ग्राम ताईं हूंदो आहे ऐं साइज़ तकरीबन जेको आहे सो जेकर साइज़ जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त 5 खां 7 सेंटीमीटर ऐं जेकॾहिं चौड़ाई जी ॻाल्हि कयूं त मीटर ऐं लंबाई जी ॻाल्हि कयूं त 11 खां 12 सेंटीमीटर हूंदी आहे लेकिन उहा उनमें फ़र्क़ु थोरो इहो वणो उन्हनि जी ही हूंदी आहे जेको वॾो हूंदो आहे उन जी तिली वॾी हूंदी आहे त इहे हिकिड़ियूं मेन पॉइंट्स हुयूं जेके अवां ताईं उन्हनि जी ॼाण पहुचाईसीं उन हाणे चऊं था त तिरी जंस हूंदा आहिनि उहे तिरी जो कमु की जो कमु असल में इहो हूंदो आहे जेको असांजे जेके बि जेको ईअं सम्झो को बि रत में बैक्टेरिया ईंदो आहे उहो उनखे जेको आहे सो अख़राज कंदी आहे यानी फिल्टर कंदी आहे यानी हिकिड़े क़िस्म जी तिरी जेकी आहे असांजे बॉडी जी फिल्टर आहे ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त जेके बि आरबीसीज़ हूंदा आहिनि या डेड आरबीसीज़ हूंदा आहिनि ईअं सम्झो उनजो हिकिड़ो पार्ट आहे जॾहिं बि जिस्म में को बि इन्फेक्शन थींदो आहे या असांजे जिस्म जा जेके बि WBC हूंदा आहिनि यानी वाइट ब्लड सेल्स हूंदा आहिनि उहे जेको आहे सो जॾहिं उन्हनि में या जंहिंखे असां लिम्फोसाइट्स चवंदा आहियूं उहे उन्हनि खे उन्हनि ते यानी ईअं सम्झो त हिकिड़ो प्रोटेक्शन ॾियण जे लाइ या प्लेटलेट्स खे प्रोटेक्शन ॾियण जो हिकिड़ो कमु जेको आहे सो असांजी तिरी जेको आहे सो कंदी आहे अहिड़े तरीक़े सां तिरी जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त तिरी असांजे यानी स्प्लीनोमेगाली यानी जॾहिं बि 11 खां 12 सेंटीमीटर खां जॾहिं बि हुनजी साइज़ त पोइ उनखे असां स्प्लीनोमेगोली जेको असांजो नालो आहे मेडिकली हवाले सां उहो उनजे हवाले सां सॾियो वेंदो आहे ऐं उनमें कंडीशन्स छा थी वेंदी आहे जंहिंजी बि तिरी हिकु त रत जी कमी थी वेंदी आहे ऐं पेट फुलिजी वेंदो आहे ऐं उहो पासो हिकिड़े क़िस्म जो सफ़ा पथर वांगुरु थी वेंदो आहे सख़्तु थी वेंदो आहे उनमें शदीद क़िस्म जो सूरु उहो पेशंट खे फीवर बि हूंदो आहे ऐं ब्लीडिंग जा बि चांसिस हूंदा आहिनि उहो त काफ़ी तकलीफ़ में जेको आहे सो पेशंट हूंदो आहे लेकिन स्प्लीन यानी तिरी जेको आहे सो वधी वञण सां माण्हू तमामु घणो कमज़ोरु थी वेंदो आहे ऐं बार बार जेको आहे सो बीमार एक्चुअली इन जा सबब जे त को बि इन्फेक्शन जॾहिं जिस्म में थींदो आहे चाहे मलेरिया इन्फेक्शन थी वञे या टाइफॉइड इन्फेक्शन थी वञे या TB जो इन्फेक्शन थी वेंदो आहे उन जे करे जेको आहे सो थींदो आहे या वरी जेको अल्कोहल या अफ़ीम खणी उन्हनि खे बि कनेक्टेड के बीमारियूं हूंदियूं आहिनि हेपेटाइटिस फैटी लिवर हूंदो आहे या जोड़नि जी का तकलीफ़ हूंदी आहे या कैंसर जा के चांसिस हूंदा आहिनि उन्हनि जे करे बि जेको आहे सो तिरी वधी वेंदी आहे त तिरी जन हिते ज़रूरु प्रोग्राम करण जो असुलु मक़सदु बि इहो ई आहे त असां वटि बि खोड़ सारा पेशंट तिरी वधण जा ईंदा आहिनि अलहमदिल्ला उनखे जॾहिं बि असां डाइग्नोस कंदा आहियूं ऐं दवा ॾींदा आहियूं त उहो माशाल्लाह जेको आहे सो उहो बिल्कुलु ठीकु थी वेंदा आहिनि सो जॾहिं बि कंहिं बि असांजे भाउ खे अहिड़ो को प्रॉब्लम थिए त जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक तव्हांजे शहर में रायपुर में मौजूदु आहे इहो इलाजु मौजूदु आहे बग़ैर कंहिं साइड इफेक्ट जे सो ज़रूरु जेको आहे सो ॾेखारींदा वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम है से अच्छी गाल है जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज समाज समात में पहुंचे पे डॉक्टर साहब नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह असान स्टूडियो में मौजूद आहिन तमा असान प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल 0301-196-8151 लाइव कॉल जो नंबर आ है 0301-196-8151 तमा असान प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल कंदा हलंदासी अस्सलाम वालेकुम रेडियो सेट के बंद कियो मुंजा साईं रेडियो सेट के बंद कियो दुआ अलहमदुलिल्लाह केर साहब गलाए पियो दा
2: जी आफस मुहर्रम अली शाह दोस्तानी
1: दा न्यू मिनट का केर साहब गलाए पियो
2: जी मुहर्रम अली शाह दो न्यू मिनट
1: जी जी खुशामदी चो ता के पंजे भा के छा पुछंदा डॉक्टर साहब का प्रोग्राम में मुंजा भा
2: जी माते जी खराबी डाली है पेट में सूर पे जो डॉक्टर साहब चला दी छाजे कर पे तो खुसुसन खास कर शाम में टेम दे
1: पे अच्छा खुसुसन शाम में करे खाण पीण जे हवाले सां उमिरि घणी आहे तव्हांजी अच्छा माना यंग आहियो तॾहिं बि मादो ख़राब थी वियो आहे मिर्च वग़ैरह घणा इस्तेमालु था कयो छा अच्छा साई भाॼी इस्तेमालु कंदा आहियो ॿुधो FM ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर डॉक्टर साहिबु
0: जिसे बिल्कुलु उनजा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि हिकु त गर्मी जो मौसम आहे कंहिंखे को प्रॉब्लम गर्मी जो पुराणो असरु हूंदो आहे उनजे करे बि सूरु पवंदो आहे या चांहि जो इस्तेमालु को घणो कंदो आहे या मुर्गन गिज़ाऊं या अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जॾहिं केरु इस्तेमालु कंदो आहे तंहिंजे करे तकलीफ़ थींदी आहे बहरहाल मादे जी तकलीफ़ या जिगर जी तकलीफ़ जे हवाले सां बि इहे प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि सो अधु खिचंदासीं हिकु त जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची पाणी में काढ़े राति जो ऐं सुबुह जो छाणे उहो पाणी पीअनि इनशा अल्ला ताला काफ़ी

0: इतफ़ाक़ु अची वेंदो, वरना होम्योपैथिक में मुंहिंजी बहितरीन ट्रीटमेंट आहे, रूबरू ॾेखारे सघंदा। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़। सभिनी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल। नवाब शाह डॉक्टर साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर, हिकु मुल्की सतह जो डॉक्टर आहे जेको असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। 0301-96-8151 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। डॉक्टर साहबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे। ए डॉक्टर साहब, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज आहिनि। माण्हू नज़लो नूर अधु मथे जो सूर जी कमज़ोरी, तिली जो 10 खां 7 पेटो। डॉक्टर साहब, छंछर आचर ऐं यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं, जुमे छंछर ऐं आचर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं बग़ैर यानी चेकअप फीस जेका हूंदी आहे उहा डॉक्टर साहिब जी बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, मुफ़्त हूंदी आहे। डॉक्टर साहिब जी चेकअप फी छंछर ऐं आचार ते अवां ॿुधो था, हफ़्ते जा मुकमल ॾींहं सवाइ अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, मोकल जो ॾींहुं हूंदो आहे। बाक़ी हफ़्ते जा 6 ॾींहं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक खुलियल आहे, उन्हनि में 3 ॾींहं फीस फ्री आहे, मुफ़्त छंछर ऐं आचार, यानी उन्हनि ॾींहनि ते चेकअप फीस बिल्कुलु बि नाहे वरिती वेंदी। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। 0301-96-8151 सिंध जो मुफ़ डॉक्टर मिताल स्टूडियो में मौजूदु, जेकी अवांखे टिप्स ॿुधाए रहिया आहिनि। कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संधनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि में वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहबु हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। लाइव कॉल जो नंबर अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं था, 0301-96-8151।

0: छा में सूर थो पए?
1: सीने में सर।
0: अच्छा सीने में सूर थो पए, खबे पासे ना सजे पासे ना? शोर में बीठा शोर में बी कॉल डॉक्टर साहब तो सुभाणे जुमो आहे डॉक्टर साहब के चेकअप रूबरू ॾेखारे वञो तो बेहतर बीमारियुनि जो इलाज भा
2: अहिड़े क़िस्म ॾिसी करे ऐं पोइ डायग्नोस कंदा आहियूं त इन अरड़े खे चवंदासीं त उहो वधीक
0: बहितर जो आवाज़ 0301 कॉल सां मालूमात वठी सघो था। मारूफ़ मेमन मौजूदु इस्लामाबाद, मारूफ़ मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाबशाह। डॉक्टर साहबु हर अरबा खमीस जुमे छंछर ऐं आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधनपुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहबु हर जुमे छंछर ऐं आचर ते डॉक्टर साहब जी जेकी चेकअप फीस आहे उहा बिल्कुलु फ्री आहे, मुफ़्त आहे। डॉक्टर साहबु तव्हां जेका इहा मुफ़्त यानी पंहिंजी चेकअप फीस नाहे वठंदा, ॾिसो तव्हांखे का कंपनी इन जी सपोर्ट करे थी या तव्हां पंहिंजे हिकिड़ी माना जीअं सोशल एक्टिविस्ट आहियो, सोशल वर्कर आहियो, समाज जी भलाई जे कमनि में जीअं तव्हां हिकिड़ो अघु भरा रहिया आहियो पूरी सिंध में तव्हांजो क्लिनिक जिते बि आहिनि उते तव्हांजो माशाला हिकिड़ी अवामी ख़िदमत रही आहे। हिते जीअं असांजे स्टूडियो में अचो था तॾहिं बि हिकिड़ी तव्हां अवाम जी ख़िदमत जे लाइ अचो पिया।
2: बिल्कुलु वॾी महिरबानी ऐं ख़बर आहे त काफ़ी टाइम खां वठी इहो पंहिंजे सोशल वारी एक्टिविटीज़ जे हवाले सां ई ऐं चेकअप फीस पंहिंजी फ्री जेको आहे सो हूंदी आहे। एक्चुअली हिकु पंहिंजो इदारो जेको जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त उन्हनि सां इहो ई असांजो तय थियलु आहे त जेके बि असांजा हफ़्ते में 3 ॾींहं आहिनि उहे पंहिंजे जेके असांजा सामाइन आहिनि ॿुधंदड़ आहिनि ऐं जेके असांजा दूर दराज़ इलाइक़नि में जेके रहंदड़ पेशंट आहिनि उन्हनि जे लाए चेकअप फीस फ्री जेको आहे सो रखियो था। हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि नोट ज़रूरु कई वेंदी आहे त इहे दवाऊं जेके आहिनि उहे अलॻि से कंपनी खां घुरायल हूंदियूं आहिनि जंहिंजी पेमेंट रखणी हूंदी आहे। कंहिं कंहिं दोस्त हज़रात हूंदा आहिनि पेशंट्स जेके शायदि इहो सम्झंदा आहिनि त मेडिसिन्स बि फ्री हूंदी आहे या वरी कोड़नि में ओधर वग़ैरह जो सिलसिलो हूंदो आहे, अहिड़ी का बि सिस्टम न हूंदो आहे। हर को माण्हू पढ़ियलु लिखियलु तबिको आहे इहो ॻाल्हि खे सम्झी सघे थो। इन जे करे जेको आहे सो ही पंहिंजो जेको सिस्टम आहे उहो अलहमदिल्ला
0: कामयाबु आहे, कॉमन बि आहे त ॾिसो दवा माण्हू खे तव्हां हिकिड़ी जेको ऐलान कयो था ॾिसो चेकअप फीस जो सिर्फ़ु ऐलान कयो था इहो अवाम जी ख़िदमत जे लाइ, इहो बि हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जो तव्हां पंहिंजी चेकअप जी जेकी फीस आहे उहा फ्री था करे छॾियो पिया। ॾिसो ॿियो जेके वॾा वॾा मिसाल जीअं तव्हांजे लेवल जा जेके बि डॉक्टर आहिनि ऐं ॾिसंदो आहियां 2,000 रुपया 2,500 रुपया रुगो चेकअप फीस वठंदा आहिनि ऐं उन जॻह ते तव्हां हिकिड़ी नॉर्मल फीस आहे तव्हांजी मिसाल 500 आहे 300 आहे या 400 जेतिरी बि तव्हां वठो था त उहा बि तव्हां उन्हनि ॾींहंनि में वरी फ्री करे था छॾियो मखसूस ॾींहंनि में। इहो आउं सम्झां थो इहो तव्हां ग़रीब अवाम जे लाइ हिकिड़ो वॾो तोहफ़ो आहे तव्हांजे तरफ़ां। इहो
2: बसि शुक्रु अलहमदिल्ला इनशा इहो क़ाइमु ऐं दाइमु रहंदो।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाबशाह इस्लामाबाद कराची ऐं नवाबशाह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु जेको असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था, डॉक्टर साहिब खां कंहिं बि बीमारी बाबति मालूमात वठी सघो था। डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो 0301 81 96 851 हे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ वञूं पिया ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां लाइन ते मौजूदु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी बाबा केरु पियो ॻाल्हाए? आवाज़ त सेट कयो मोबाइल जो, इहो आवाज़ छो चेंज कयो अथसि? पहिरियों आवाज़ सेट कयो, हाणे आवाज़ तव्हां तब्दील कयां वेठा हुओ मोबाइल जो। ख़ैरु अथव जी मुंहिंजा साईं? किथां था ॻाल्हायो, केरु थो ॻाल्हाए? अच्छा नेपाल जा वारा, तूं सफ़ा वेझो ऐं सफ़ा सुभाणे हलियो आहे जुमो आहे, जुमे ते डॉक्टर साहिब जी चेकअप फीस त मुफ़्त आहे फ्री कयूं वेठो। डॉक्टर साहिबु वॾा पैकेज रखी वेठो आहे तव्हांजी आवाम जे लाइ, तव्हांजे लाइ हलिया जो 10 मिंट जो पंधु नेपाल जा।

0: मैं रापुर गडियो पे मुंजा मिठा
1: जी सर जी
0: हां बद एक बुधाओ एफएम बुधो डॉक्टर साहब वहां के बुधाइंदो जो छा मसलो दे सिर्फ यही मसलो दिन बसरु घुमा दे जो
1: जी सर जी
0: बिल्कुल ठीक है एफएम बुधो डॉक्टर साहब वहां के बुधाइंदो जी सर डॉक्टर साहब
2: अदो ही आवाज चेंज कंदो तो उनके हेडकी थींदी सो जे करे एक त जको है सो मादे जे हवाले से तकलीफ है बेहतर यो ही है त रूबरू अची ए दवा वठी बड़ी देर वाले
0: प्रोग्राम है सेहत जी गाल जी मेहरापुर एफएम 94 जो आवाज सवां जे समातुन ने पहुंचे पियो डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असन जे स्टूडियो में मौजूद आन सिंध जा मशहूर मारूफ डॉक्टर एक मुल्की सतह जो जो डॉक्टर है जो इस्लामाबाद का वठी करे कराची ते मशहूर आई मेडिकल जे हवाले सा खास तौर ते वडी बीमारी जेके भी आन जेके लाइलाज मरीज थी करे अचन था भले खणी अधरंगे जो मरीज हो जे अल्लाह डॉक्टर साहब वडा चन था शिफा याब थी वनन था पित्त जी पथरी जो मरीज आ है डॉक्टर साहब वडा चे तो शिफा याब थी वनन दो गुर्दे जी पथरी आ है मसाने जी पथरी आहे इहे उन्हनि सभिनी बीमारियुनि में जो डॉक्टर साहब वटि कामयाब इलाज मौजूदु आहे कालर आहे काल जी तरफ़ हलूं पिया अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी अदा केर साहब ॻाल्हाए पियो लाशारी साहब ठीकु आहियो त बि ठीकु आहे छा पुछंदा डॉक्टर साहब खां
1: सर डॉक्टर साहब का यो पुछवा तो पुरानी खारस है मल्लो देखो न तो छदे इंदे ने कोई इलाज
0: इलाज मौजूद है डॉक्टर साहब को मसलो ही कोने 2022 वाली जरे बोड आई उने खां पो ये जेके बीमारी आयो स्किन वाली ये खारिश वाली न वो तकरीबन मरीज लाइलाज थी करे वरी भी डॉक्टर साहब वटे इंदा हन
1: सर
0: ता के घणे अरसे का वठिया खारिश
1: तकरीबन
2: होम्योपैथिक में तमाम बेहतरीन बगैर साइड इफेक्ट होने वाली दवाओं मौजूद हैं जी अस जी भी मुख्तलिफ़ बीमारियों स्किन स्केबाइज एक्जिमा या सोराइसिस वगैरह जी भी थन्दी फंगल इन्फेक्शन होंगे उनमें जी मेडिसिन्स ढींदा अलहमदिल्ला पेशेंट ढो सेहतयाब थी वेंदा आहिनि दूर दराज इलाइक़नि मां काफ़ी हंधनि था के कराची मां मोटी ईंदा आहिनि के ख़ुदि हिते मेहरापुर वासी जेके ईंदा आहिनि त साईं असां हिते बि ॾेखारियोसीं फलाणे हंधि स्किन स्पेशलिस्ट खे ॾेखारियोसीं उहे शिफ़ायाब थी चुका आहिनि सो अॼु खे बि चवंदासीं हिकु त जेको आहे सो गर्मी जो बि मौसमु आहे ऐं रत बि बिगाड़ खाईंदो आहे इन जे करे हिकु त पनीर बि इस्तेमालु कयो पनीर बि तव्हांजे लाइ बहितरु आहे 8-10 दाणा रोज़ाना राति जो पाणी में पिसाए रखो हिकिड़ो नंढो फोटो ॿ कारा मिर्च ऐं हिकिड़ो नंढो टुकड़ो मिसरी जो सुबुह जो उनखे छाणे ऐं उहो जेको आहे सो पाणी पियो इनशाला ताला उन सां ॾिसो हीअ हिकिड़ी क़िस्म जी
0: फर्स्ट एड आहे ॾस पंध आहे मिसाल
2: गॾो गॾु दवा सां
0: वेठो आहे बराड़ी में वेठो
2: आहे गॾु दवा सां बि हली सघे थो ऐं वधीक उन सां दुहरी सपोर्ट मिलंदी लेकिन इहो आहे त गॾो गॾु दवा बि हूंदी त तव्हांजी जान बि छुटी वेंदी वॾी
0: हिकिड़ो रूबरू ॾेखारियो वञे त वधीक बहितरु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम ख़ुश आमदी चऊं था तव्हांखे मुंहिंजा भाउ छा पुछंदा डॉक्टर साहब खां
1: डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं मुंहिंजी नंढड़ी आहे 13-14 साल जी हुनखे पथरी मर्ज़ु हुयो बरहाल जेको आहे दवा लीमो ऐं माखी पीआरी हुन में अल्ट्रासाउंड करायो सूर पवे थो नंढड़ीअ खे वरी 6 महीने 5 महीने
0: असुल सूर पवे थो पथरी आहे रहियल अञा हा तंहिंजे करे सूर पवे थो उहे अल्ट्रासाउंड खणी करे रूबरू जेको आहे सो नंढड़ी खे बि वठी अचो रूबरू ॾेखारियो वधीक बहितरु आहे सुभाणे जुमे जो ॾींहुं आहे डॉक्टर साहिबु चेकअप फीसूं हिननि ॾींहंनि में फ्री रखी आहे तव्हांखे इहा सहूलियत आहे हितां वारनि खे त उहो
1: बहितरु
0: थींदो वधीक डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो जी जी अदा
2: अॼु साईं बिल्कुलु जेके ॿुधाईंदासीं त पथरी जे हवाले सां मां पहिरियों ई ऐलान कंदो आहियां त जेके चाहे पिते जी पथरी त गुर्दे जी पथरी आहे अलहमदिल्ला में कामयाब इलाज असां वटि मौजूदु आहे चाहे 20 mm पथरी आहे चाहे 40 mm ताईं 60 mm ताईं जेकी पथरी हूंदी आहे पर कुझु टाइम इस्तेमालु करणी पवंदियूं आहिनि दवाऊं पोइ ई दवाऊं पथरियूं निकिरी वेंदियूं आहिनि अधो जेको नंढड़ी जे हवाले सां ॿुधाए थो त किचिरो बि हूंदो आहे इन्फेक्शन बि थी वेंदो आहे उहो जॾहिं नंढड़ी खे साम्हूं वठी ईंदा ऐं जेकॾहिं हुनजो अल्ट्रासाउंड बि करायल आहे त अञा वधीक ज़्यादा बहितर आहे
0: जेको लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड
2: नियरली जेको अल्ट्रासाउंड करायल हुजे उन जे हवाले सां जॾहिं दवा ॾींदासीं अलहमदिल्ला पेशंट बिल्कुलु ठीकु थी वेंदो ऐं जेके अदड़ी खे मादे जी तकलीफ़ आहे जलन जे हवाले सां उनजे लाइ बि जेको आहे सो बहितर इहो ई आहे त ट्रीटमेंट रूबरू वठी ॾियनि उन्हनि जे लाइ बाक़ी मां मादे जे लाइ अक्सर जेको ई रस ॾींदो आहियां यानी जीरो ऐं सौंफ काढ़े चमची ऐं उहो पाणी छाणे पियो उन में को बि नुक़सानु कोन्हे को ऐं उहो हर मरीज़ जे लाइ ऐं हर फर्द जे लाइ बहितर आहे
0: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु सामिन तव्हांखे ॿुधाए रहियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो पहिरियों हलूं था डॉक्टर साहिबु कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ इन खां बाद में दोस्तनि जूं ॻाल्हि प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलंदासीं गॾु गॾु रजो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

मेहरापुर जी विजिट करियो। वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमण, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम। कॉन्टेक्ट नंबर 03000002724। निसार अहमद मेमण, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453।

0: साम्हूं वधणपुरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहब, जेके पित्त जी पथरी वारा मरीज ठीक थी वञनि था, अलहमदिल्ला तव्हां ॾिसो उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो।
1: हिकु
0: पेशंट आहे जेको चए थो त मूं 5 महीना दवा हलाई ऐं मुंहिंजी पित्त जी पथरी ऐं वॾी पथरी ॿुधाए थो 23 mm जी पथरी हुयसि। उन जा जेको आहे सो व्यूज़ दोस्तनि ते पहुचायूं था।
2: तक़रीबन 23 mm जी या अल्ट्रासाउंड बि जेको मौजूदु आहे उनमें मल्टीपल सिस्टोन्स ॿुधाइनि पिया। साईं जेको आहे सो काफ़ी अर्सो मेडिसिन इस्तेमालु कई आहे जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जी। अलहमदिल्ला हीअं जेको साईं अल्ट्रासाउंड खणी आयो आहे उनमें स्टोन बि नाहे रही ऐं प्लस में का बि अहिड़ी ख़ासि तकलीफ़ बि नाहे रही। साईं तव्हांजो नालो छा आहे, छा चवणु चाहींदा? पहिरियां आयो
3: अलहमदिल्ला जेको आहे डॉक्टरनि जो ऑपरेशन थींदो ऐं 23 mm जी हुई। अलहमदिल्ला मां 5 महीना दवा साईं जी इस्तेमालु कई, पोइ अल्ट्रासाउंड मां करायो। अलहमदिल्ला जेको आहे हाणे कान्हे का, अलाह पाक महिरबानी कई साईं।
2: हींअर तकलीफ़ कहिड़ी वञी बची आहे?
3: तकलीफ़ जेका हींअर कान्हे का। बसि इहो डॉक्टर भलो माण्हू
2: आहे।
3: होम्योपैथिक जी दवा जेका आहे उहा भली आहे, इलाज हुकम सां निकिरी थी वञे, पर कुझु अरसो लॻे थो। हाणे पोइ 3 महीननि में बि चवनि था की 6 महीना हले थी, पोइ मूंखे 5 महीना थी विया।
2: महिरबानी।
0: डॉक्टर साहिबु, ॾिसो, हीउ जेको पेशंट आहे हीउ चए थो त माना 5 महीना, हाणे 5 महीना सम्झां थो त जेकी 23 mm जी वॾी पथरी आहे, नंढी पथरी न आहे।
1: जी साईं,
0: हाणे 5 महीननि में जेकॾहिं हिकिड़ी पिते जी पथरी 23 mm जी ऐं हिन जो अल्ट्रासाउंड जेको मूं ॾिठो, तव्हां पाण ॾिठो, वरी उनखे फेसबुक ते बि रखियो वियो 2-3 अल्ट्रासाउंड, हिकिड़ो अल्ट्रासाउंड बि न, त उहे जेके अल्ट्रासाउंड आहिनि त उन में वक़्तनि बवक़्तनि हिकिड़ी घटि बि रही आहे ऐं जेको पेशंट आहे त उनजी जेकी पोज़िशन आहे माना उनखे तकलीफ़ बि न रही, सूर बि न रही। पहिरियां दवाऊं वठंदो हो त उनखे असर न पियूं कनि, पर जॾहिं असां वटि आयो पंहिंजे क्लिनिक ते, जर्मन क्लिनिक ते, तव्हां वटि, त ॾिसो उहो माना हिकिड़ो पेशंट त उन ठीकु थी वियो, पर माना अलहमदिल्ला उनजा 5 ॿियो शायदि माना 3 महीना 5 महीना मां सोचियो त 5 महीना को घणो अरसो कोन्हे को पिते जी पथरी जे लाइ।
1: जिस बिल्कुलु ॻाल्हि जी ज़रूरु वज़ाहत कंदासीं त उहो पेशंट ॾाढो परेशान हुयो ऐं हू खे इहो यकीन ॾियारे वियो हो त इहा नामुमकिन आहे, पथरी पिते जी जेको आहे सो न निकिरंदी आहे। सो हिकु त ॻाल्हि वाज़ कंदा हलूं त पिते जी पथरी वाक़ई कोन निकिरंदी आहे, पिते जी पथरी उते ख़तमु थी वेंदी आहे असांजी दवाउनि सां। यानी हिकु ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त जेकी गुर्दे वारी पथरी हूंदी आहे उहा कैल्शियम मां ठहंदी आहे ऐं जेकी पिते वारी पथरी हूंदी आहे उहा फैट मां ठहंदी आहे। फैट यानी चर्बी ऐं 80% फैट मां हूंदी आहे, 20% जेको आहे सिर्फ़ु कैल्शियम मां ठहंदी आहे। सो इन जे करे जेकी 80% फैट मां हूंदी आहे उहा असांजी होम्योपैथिक दवाउनि सां अलहमदिल्ला उते ख़तमु थी वेंदी आहे, ॻरी वेंदी आहे। सो उनखे यकीन ॾियण जे लाइ असां उनखे दवाऊं ॾिनियूंसीं, एटलीस्ट असां टाइम पीरियड ॾींदा आहियूं घटि में घटि 3 महीना ऐं ज़्यादा से ज़्यादा त जेतिरो अरसो बि खाई सघे थो 5 महीना 6 महीना साल बि लॻी वेंदो आहे। सो पर हू वीचारो पेशंट जेको आहे सो पंहिंजे ख़ातिरी ॾियण जे लाइ हर महीने अल्ट्रासाउंड कराईंदो हो ऐं हर महीने गुज़िरियल 3 महीननि ताईं हुनखे का बि हुन में रिज़ल्ट नज़र न आई, त उहो बि कुझु बाग़ी थी पियो ऐं हुन बि इहा ॻाल्हि कई त हाणे साईं असां इलाज कोन कराईंदासीं, तकलीफ़ त कान्हे का पर पथरी छो न थी ख़तमु थिए। अरे बाबा, जॾहिं पथरी जो पंहिंजो टाइम ईंदो त ख़तमु थींदी। 3 महीने में हुनजी जेकी रिपोर्ट आई उहा 23 mm मां 18 mm ते पहुती, त हुनखे कुझु दिलदारी थी पर चए पियो त अञा मुकमल ख़तमु थियण जे लाइ। ज़ाहिर इहा पेशंट आहे उहो इहो चाहींदो आहे त मूंखे यकदमि फ़र्क़ु पए, लेकिन जिते हू एतिरो टाइम सर्वाइव करे थो ऐं हुनखे ऑपरेशन ॿुधायो वञे थो, ॿियो त को हल न हूंदो आहे। उन मेडिकली ऑपरेशन में पितो ई कजो वेंदो आहे, पर हिन में बग़ैर ऑपरेशन जे पितो पंहिंजी जॻह ते मौजूदु हुजे ऐं पथरी ख़तमु कई वञे, छो जो पितो खां बग़ैर या पिते में जॾहिं पथरी हूंदी आहे त मरीज़ सां छा कंडीशन हूंदी आहे उहा मरीज़ खे ख़बर फीवर होंदी आहे त उकारा हूंदा आहिनि, खटियूं ढकारियूं ईंदियूं आहिनि पेट में, ऐं हां वारी जॻह ते शदीद सूर पवंदो आहे ऐं उहो पेशंट अधु थी वेंदो आहे। जॾहिं पितो निकिरी वेंदो आहे पोइ बि हुन जो को हल न हूंदो आहे, उहा साॻी तकलीफ़ मरीज़ खे रहंदी आहे। इन जे करे मां हुन ऐं जॾहिं हुन पंज महीना उनखे पूरा थिया त उन अल्ट्रासाउंड करायो त अलहमदिल्ला बिल्कुलु रिज़ल्ट उनजी क्लियर आई, ऐं उन डॉक्टर खां अल्ट्रासाउंड करायो जंहिंखां लॻातार हू पंज महीना त हुरु जेको हुनखे चए पियो त नामुमकिन आहे, उहो ख़ुदि हैरत में अची वियो ऐं उन मूडे खे बि फ़ोन करे ऐं कॉन्ग्रेचुलेशन ॾिनी त तव्हांखे जस हुजे तव्हांजी वाक़ई होम्योपैथिक दवाउनि में शिफ़ा आहे। सो अलहमदिल्ला इहो असांजो कमाल कोन्हे को शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, पर होम्योपैथिक दवाउनि जे रस्ते जेको आहे सो इहो कमु थींदो आहे। सो मां बि उन्हनि दोस्तनि खे इहो ई चवंदुसि जेकॾहिं कंहिंखे बि पिते जी पथरी आहे त पितो हरगिज़ न कढाइनि, उनजी दवा ज़रूरु इस्तेमालु करनि, पर यकीन जेको आहे सो करे ऐं पोइ छो जो यकीन अलाह जी ज़ात ते, लेकिन शिफ़ा अलाह ताला ई ॾींदो आहे, दवा होम्योपैथिक जे रस्ते। वॾी
0: महिरबानी। आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर इस्लामाबाद कराची ऐं नवाब शाह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। 0301-2196-8051। डॉक्टर साहिबु, हर जुमे छंछर ऐं आचार ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं बग़ैर फीस जी यानी चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। इन खां अलावा अरबा ख़मीस ऐं सूमर ते डॉक्टर साहिबु मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। कॉलर लाइन ते मौजूदु, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बाबा।
4: जी, कन जो पर्दो फाटी पियो त दवा बि वठी आयूं, चवनि दवाउनि जे रसीदे सही थियो त चयो न त ऑपरेशन ॾिनो, पोइ इन जो को रस कंदा आहे।
0: तव्हां पहिरियां ॻाल्हायो न बाबा, न
4: जी न उहो सम्झे की आवाज़ ई कोन आयो
0: तव्हां ॿुधो, तव्हां एफ एम ॿुधो, तव्हां हिकिड़ो कमु करियो, मां तव्हांखे आवाज़ु पहिरियां सम्झ में न आयो, इन जो इलाजु मौजूदु आहे डॉक्टर साहिबु वटि। डॉक्टर साहिबु हिकु मुल्की सतह जो डॉक्टर आहे, इस्लामाबाद कराची नवाब शाह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहे। जुमो छंछर ऐं आचार ते डॉक्टर साहिबु पंहिंजो चेकअप फीस हिते नाहे वठंदो। तव्हां मेहरापुर में वारनि जे लाइ या पसगिरदाई वारा उन्हनि जे लाइ इहा वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त हेॾो वॾो डॉक्टर तव्हांजे मेहरापुर शहर में अचे थो। सुभाणे जुमे जो ॾींहुं आहे, तव्हां उनखे रूबरू ॾेखारे वञोसि त वधीक बहितर थींदो। डॉक्टर साहिब खे तव्हां ॾेखारियो, फीस वग़ैरह कान्हेसि का, दवा बाक़ी तव्हांखे स्टोर तां वठणी पवंदी, इहो सही थी वेंदो, को मसलो ई कोन्हे, को ऑपरेशन जी ज़रूरत ई न पवंदी तव्हांखे। जेका बीमारी आहे ॾिसो, तव्हांजो पर्दो फाटल आहे कन जो, इहो ॾस पंध वारो न आहे, ॾस पंध उनखे ॾिबो आहे जंहिंजी थोरी बीमारी हूंदी आहे। हीअ हसास आहे, कन आहे, अख आहे, इहे नाज़ुक शयूं हूंदियूं आहिनि बे इंतिहा, इन्हनि ते ॾस पंध न आहिनि कबाज, थोरो इहो सम्झो। बुखार त न आहे, मिसाल हाणे नारे में वेठा आहियो तव्हां, तव्हांखां 3 किलोमीटर इस्पताल परे आहे, जो तव्हांखे चूंडकी वञिणो पवंदो, इन्हनि खे मिसाली ॻोठ वारनि खे मुंड जमड़ा वारनि खे सांगड़ वञिणो पवंदो, उहो कमु त आहे कोन। तव्हां हिते विझा वेठा आहियो 15 किलोमीटर ते, 10 किलोमीटर ते हलिया अचो डॉक्टर साहिब खे ॾेखारियो, इहो ॾस पंध जहिड़ो न आहे। ऐं कन में का बि काठी वग़ैरह न हणिजो या कीअं, इन में भुलिजी करे बि माण्हू कन जी सफ़ाई कंदा आहिनि, उहा न कजो बाबा। हा बिल्कुलु न आहे हाणे, ठीकु
4: आहे।
0: हा एहतियात तव्हांखे ॿुधाए थो, एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो।
1: जी बिल्कुलु, अॼु खे पहिरियों ई एहतियात ॿुधायोसीं, हिकु त जेको आहे सो यानी जॾहिं बि विहिजनि त कपह विझी ऐं पोइ विहिजनि, ऐं जीअं तव्हां हुनखे चयो त हीअ को आम बीमारी कान्हे जंहिंजो ॾस पंध हुजे, हिन जो इलाज ई आहे, ट्रीटमेंट आहे। इलाज बि मां हिकिड़ी यकीन हुजण जी ज़रूरत आहे ऐं इहो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त उनमें 3-4 महीना लॻी वेंदा आहिनि दवाउनि जा, जेकॾहिं उहो यकीन करे ऐं सम्झी ऐं पोइ मुंहिंजो पेशंट अचे थो त ठीकु आहे, वरना अक्सर ईअं थींदो आहे त को असां वटि पेशंट अची को 15 ॾींहं दवा खाई छॾे वञे त उहो पंहिंजा पैसा ई बर्बादु कंदो, त उनमें को फ़र्क़ु न पवंदो आहे।
0: ऐं कन जो ऑपरेशन उहो केॾो तकलीफ़ हूंदी आहे उहा मरीज़ खे ख़बर हूंदी आहे, कन हुजे गलो हुजे, ही अहिड़ा जेके ऑपरेशन आहिनि ॾाढा ॾुखिया हूंदा आहिनि, या जेको पितो वञी माण्हू कढाइनि था उहो बि को एॾो आसान न हूंदो आहे। हीअ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ हलूं पिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं अलहमदिल्ला, केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो मुंहिंजा साईं? हा जी राजभर साहिबु, छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां? अच्छा, तव्हां अॻियां दफ़े ई पुछो हुयो न बाफ़ताग में? अॻियां दफ़े ई पुछो हो न बाफ़ताग में डॉक्टर साहिब खां? अच्छा, उहा हेलो वो अच्छा रे
5: जी जी सर जिस समय आ रहे थे ना
1: बिल्कुल शायद आ रहे हैं जी बारे में लास्ट टाइम पूछो हो वरी भी आज बुधाई था दोस्त के त मेट जो है सो तमाम बेहतरीन जो सोशी है मेट से मेट में जो सो कलमी छोरो वहाँ के पंसारी हेटा मिली चपटी कलमी छोरे की बटे कतरा लीमे जहाँ वेझी उन वेझो इनशाला तला अवजो जिसम की जी भी गरमाइश गर्मी दाणा वह खत्म थी वा वही
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल जी अमेरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ अवे समात में पहुंचे पो सिंध जो मशहूर मरूफ़ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असि स्टूडियो में मौजूद हैं जी लाइव कॉल जरिए टिप्स बुधा रहा 0301-96-8151 डॉक्टर साहब जो नंबर है डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूँ वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमारियों जहाँ माहिर डॉक्टर अवां जे लाइ वरी इहा खुशनसीबी आहे मेहरापुर शहर वारा हुजनि या मेहरापुर जे बहराड़ी वारा जिते जिते ही असांजो आवाज़ पहुचे थो त हिकु वॾी लेवल जो जेको डॉक्टर आहे उहो मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे इलाज कंदो यानी चेकअप फीस डॉक्टर साहब जी बिल्कुलु मुफ़्त आहे अवां ॾेखारे सघो था डॉक्टर साहब सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह एम ए डी एच एम ए सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशन माहिर अमराज गुर्दे पिते ऐं मसान जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कनि था संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु हुजे कुंदरग जो सूरु हुजे गले जो सूरु हुजे पुराणो नज़लो निछूं मथे जो भले सूरु हुजे अधु मथे जो सूरु हुजे नज़र जी कमज़ोरी हुजे कन जो वहणु हुजे कन जो सूरु हुजे घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जो सूरु मादे जी अल्सर तिली जो वधणु जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण औरतुनि में वज़न जो न वधण या जिन औरतुनि जो वज़न वधी वञे थो औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटली मोहम्मद कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि 0301-96-8151 ते अवां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहब खे कॉल करे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था ऐं मालूमात वठी सघो था।

पाक फौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी चयो आहे त दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियुनि जी का बि गुंजाइश न आहे। दहशतगर्दनि खे हाण समुझ में अची वियो आहे त उन्हनि सां का बि नरमी न थींदी। दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि ॿी सूरत में ख़तम कया वेंदा। लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग में चयो त फोर्सिस 40,348 ऑपरेशन कया आहिनि। 819 जवान शहीद थिया ऐं 2084 दहशतगर्द मारिया विया। बलोचिस्तान में 38,080, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऐं मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि में 2,091 ऑपरेशन कया विया। बम धमाकनि में घणे भाङे अफ़गान शहरी मुलविस रहिया आहिनि। दहशतगर्दीअ जे वाक़नि में 322 पाकिस्तानी शहरी शहीद थिया। छा असां हार्ड स्टेट आहियूं? बदकिस्मती सां न। हार्ड स्टेट जो मतिलबु अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबर हुजे। हार्ड स्टेट जो मतिलबु आहे त जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिबि थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलबु आहे जिते को बि जागीरदार न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलबु नाहे त मिलिट्री रियासत हलाईंदी हुजे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फ़र्ज़ु आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे। भारत ऐं तालिबान जो DNA हिकु आहे। भारत आका ऐं अफ़गान तालिबान उन जा ग़ुलाम आहिनि। अफ़गान तालिबान दहशतगर्दनि खे कारोबार तौरु इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। आम अफ़गान शहरी मौजूदा तालिबान हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। अफ़गान तालिबान हुकूमत जो तर्ज़ अमल इस्लामी तालीमात मुताबिक़ नाहे। उहे फ़तवाऊं जारी करे मुस्लमाननि खे क़तल कराईंदा आहिनि। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त अफ़गान तालिबान हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ऐं RSS जो नज़रियो साॻियो ई आहे। फितना हिंदुस्तान ऐं फितना ख़्वारिज जा सरपरस्त RSS ऐं हैबतुल्ला आहिनि। अफ़गान वज़ीर पंहिंजे पीउ भारत खे रिपोर्टूं ॾियणु वेंदा आहिनि।

0: जवानन जी शहादत ते मौलाना जो बयान समझ का बाहर है। जवानन जी शहादत ते जेके गालियों कयूं वयूं उहे भारतीय बयानी जेडियूं आहिन। पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी जो जे यू आई सरबराह जी बयान ते रद्द अमल। डीजी आई एस पी आर चयो तो मोहतरम सियासतदान के चवां तो शऊर दियो मानन के मुझायो ना।
1: रोशन अफ्ती साहब ने मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था। ये जो तजवीज उन्होंने दी वो घुसी पिटी तजवीज है। एक जो बहुत सारी तजावीज दी है उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। नौजवानों ने आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। वो किसी भी तरीके से कॉकरोच नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार है।
0: सूफियन की धरती सिंध जा मानू कहीं भी सूरत में नवा सूबा कबूल न कंदा। नौजवान मुल्क जो मुस्तकबिल आहिन, उहे कॉकरोच नथा थी सकन। सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो घरू वजीर मोहसन नकवी जी बयान ते रद्द अमल। भेटशाह में मीडिया से गालंदे वडे वजीर चयो तो नवन सूबन की गाल का नई ना है, पर सिंध जो अवाम यह तजवीज कहीं भी सूरत में कबूल न कंदो। हैदराबाद सखर मोटरवे की पैसन की खुर्द बुर्द बाबत शायद गवर्नर वट दुरुस्त जान ना है। इन मामले की जांच थी हुई ए कुछ पैसा भी रिकवर थिया हुआ। दुश्मन कुवतूं बलोचिस्तान के गैर मुस्तहकम करण जूं कोशिशूं करे रही आहिन। सूबे में सूरतहाल कुछ खराब थी रही है। मुल्क में अजीब साजिश थी रही है तो सियासी जमातन के चवां तो सियासत के दहशतगर्दी से न गंढियो। रियासत के सियासत न पर रियासत के रियासत की जरूरत है। बलोचिस्तान के वडे वजीर सरफराज बुख्टी जी ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटिया में पासिंग आउट परेड के खिताब। सरफराज बुख्टी चो तो बलोच कौम के अड़ी जंग तरफ धेको वो है जैमें हासिल कुछ न थो। बलोचिस्तान जा मानू रियासत से गड बीठल आन, राह हक से हलन वारन लाए असा दरवाजा खुलल आन। दहशतगर्दी खिलाफ एक इंच भी पोते न हटंदी। घरू वजीर मोहसन नकवी की इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के व्यापारियों और सनतकारों से मुलाकात। व्यापारियों और सनतकारों पारा मसलन बाबत आगाही। मोहसन नकवी चयो तो हुकूमत कारोबारी बिरादरी के मसलन के हल लाए समूरा वसीला कतब आणींदी। वह जल्द पिशावर और कोटिया जो दौरो कंदो जिते सूबाई अख्तियार की मौजूदगी में व्यापारियों से तफसीली मुलाकात कई वेंदी ए संदन मसलन जो मुस्तकिल अमली हल कढ़ियो वेंदो। कारोबारी बिरादरी की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कोटिया के इलाके स्पेन कॉरेज में कोयले की खान अंदर धमाके सबब दबजी वल 34 पोरतन जा लाश कढ़िया वया। खान में फाथल 8 जणन के बचाने लाए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खान के मालिक मूजिब धमाके वक्त 42 मजदूर खान अंदर मौजूद हुआ। बलोचिस्तान के वडे वजीर वाके की रिपोर्ट तलब करे वरती। सदर वजीर आजम पारा दुख जो इजहार। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुख जो इजहार कंदे चयो तो वाके की शफाफ जांच कई वे जो भी जिम्मेवार हो खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वे।
2: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003855569।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
6: न? अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
9: 03013992836।
10: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: पाक फौज जे तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियुनि जी का बि गुंजाइश नाहे। दहशतगर्दनि खे हाणे समुझ में अची वियो आहे त उन्हनि सां का बि नरमी न थींदी। दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि, ॿी सूरत में ख़तम कया वेंदा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग में वधीक चयो त फोर्सिस 40,348 ऑपरेशन कया आहिनि, 819 जवान शहीद थिया ऐं 2084 दहशतगर्द मारिया विया। बलोचिस्तान में 31,080, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177, मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि में 2,091 ऑपरेशन कया विया। बम धमाकनि में घणे भाङे अफ़गान शहरी मुलविस रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जे वाक़नि में 322 पाकिस्तानी शहरी शहीद थिया। मुल्क जी आबादी चवण ते वधी वई आहे। सूबा साॻिया ई 4 आहिनि। 1972 ईस्वीअ में आबादी 7-8 किरोड़ हुई, हाणे 25 किरोड़ आहे त कुझु सो। आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फ़ैसिलो कंदा त अॻिते कीअं हलणो आहे। सुठी हुकुमरानी लाइ इंतज़ामी रीसीट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुरिजे। क़ाबिल एतिराम सियासतदारनि समेत सभिनी पार्टियुनि जी बि ख़्वाहिश आहे त मसला हल थियनि। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त मोहसिन नकवीअ खे हक़ हासिलु आहे त पंहिंजी ज़ाती राय ॾे, आइन मुताबिक़ मसला हल करे सघजनि था। अवाम जी राय वठणु घुरिजे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन न आहे त आइन मुताबिक़ फ़ैसिलो करे। पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकमरानी इंतिहाई अहम आहे।
1: अहमद बेटा चलो उठ जाओ।
2: मम्मा
1: हाँ,
2: दांत में बहुत दर्द है। कैविटी? कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा?
1: आज फिर स्कूल छोड़ो।
2: ओके मम्मा।
1: तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो, ड्रामेबाज।
3: हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत।
2: 24 घंटे तो कैविटी का कोई चांस ही नहीं।
4: कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन।
0: रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फर्ज़ आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
5: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।

0: अरे जल्दी करो यार, तुम्हारी फ्लाइट ना मिस हो जाए।
1: ऐसा दस्तरखान छोड़ के कौन जाए?
0: दस्तरखान बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, सूफी का एहतमाद लिए।
2: नादिन, हुकूमत जो महांगाई सटियल अवाम मथां हिकु वधीक वार पेट्रोलियम शयुनि खां पोइ एल पी जी बि महांगी करे छॾी आहे। एल पी जी जी फी किलो क़ीमत में 13 रुपया इज़ाफ़ो ओगरा नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिब एल पी जी फी किलो क़ीमत 241 रुपयनि मां वधाए 254 रुपया कई वई आहे। नोटिफिकेशन मूजिब घरेलू सिलेंडर 2849 रुपयनि मां वधी 3001 रुपये जो थी वियो आहे। महांगाई अवाम मथां हिकु ॿियो वार पेट्रोलियम शयुनि खां पोइ एल पी जी बि महांगी थी आहे। एल पी जी जी फी किलो क़ीमत में 13 रुपया इज़ाफ़ो थियो आहे, जंहिं खां पोइ ओगरा पारां अहिड़ो नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिब एल पी जी फी किलो क़ीमत 241 रुपयनि मां वधाए 254 रुपया कई वई आहे। घरेलू सिलेंडर 2849 रुपयनि मां वधाए 3001 रुपये जो थी वियो आहे। असद शहर असांखे ज्वाइन कयो आहे इस्लामाबाद मां, तफ़सील मालूम कंदासीं। असद, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि?
3: जी बिल्कुल, वक़्त एल पी जी जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। ओगरा तरफ़ सां बाज़ाबता नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। एल पी जी जी क़ीमत में 13 रुपया फी किलो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हिन हवाले सां 241 रुपयनि मां जेका एल पी जी जी क़ीमत हुई उहा वधाए 254 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। ऐं इहो इज़ाफ़ो त घरेलू सिलेंडर जी क़ीमत।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 आई 0242-460-1100।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: काबिल एहतराम सियासतदान समेत सभी पार्टियों की भी ख्वाहिश है तो मसला हल थे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी प्रेस ब्रीफिंग कंदे चयो तो मोहसिन नकवी के हक हासिल है तो पंजी जाती राय दे आईन मुताबिक मसला हल कर सकजन था। अवाम की राय वठन घुर्जे। अवाम गवर्नेंस में मुतमिन है तो ठीक मुतमिन ना है आईन मुताबिक फैसलो कर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकुमरानी इंतहाई अहम है। मसला हल न पाया थन उन मतलब है सुठी हुकुमरानी लाइ कुछ न कुछ करो पव।
2: हम दहशत गर्दी के बारे में बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीस करें, जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर व्हिच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक, यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिलीज फॉर्चून, नॉट इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ये उन्हें प्रॉब्लम कि हमें क्यों नहीं अपीस किया, हमारे आगे पैरों का हाथ नहीं लगाया जाए, हमसे बात करें, क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेडीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी मेरी जाती फोर्स है।
1: बलोचिस्तान जा केतरा ही सरदार सिधी रीत दहशतगर्दी जो हिस्सो आहिन। ही गैर कानूनी कारोबार जी परमिट सूबे जी था चवन था तो हिस्सो न दींदो तो दहशतगर्दी कराइंदा। उहे माण्हू लेवीज फोर्सेस के भी पंहिंजी सरदारी फोर्स समझन था। ही चाहिन था तो बलोचिस्तान अगते न वधे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जा सबूत मीडिया के ॾेखारे छॾिया। डीजी आईएसपीआर चयो त जाणी वाणी तासुर पखेड़ियो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि। फितना हिंदुस्तान खे मुयसरु अंदाज़ में निशानो बणायो पियो वञे। दहशतगर्द अवाम खे तकलीफ़ पहुचाईंदा त रियासत बि उन्हनि ख़िलाफ़ भरपूर ऐं सख़्त कार्रवाई कंदी। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त दहशतगर्दन सां ॻाल्हिन जी का भी गुंजाइश न आहे। दहशतगर्दन के हाण समझ में अची वियो आहे त उन्हनि सां का भी नरमी न थींदी। दहशतगर्द रियासत के साम्हूं झुकन ॿी सूरत में खत्म कया वेंदा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज ब्रीफिंग में वधीक चयो त फोर्सिस 40,348 ऑपरेशन कया, 819 जवान शहीद थिया ऐं 2084 दहशतगर्द मारिया विया। बलोचिस्तान में 31,080, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऐं मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि में 2,091 ऑपरेशन कया विया। बम धमाकनि में घणे भाङे अफ़गान शहरी मुलविस रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जे वाक़नि में 322 पाकिस्तानी शहरी शहीद थिया। बदकिस्मती सां असां हार्ड स्टेट नाहियूं। हार्ड स्टेट जो मतिलब अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून ते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिब थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलब आहे जिते का बि अशरफिया न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलबु हरगिज़ नाहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फर्ज़ आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
2: What is anything common between India and Afghanistan? So why DNA? The only thing common amongst them is that is unki diplomacy usi ka hai. Isliye aap dekhe ki what is common between Fitnal Hindustan and Fitnal Khawarij? Nothing.
1: Bharat aur Taliban jo DNA ek hi hai, Bharat aka aur Afghan Taliban unhe ja gulam hain. Afghan Taliban dehshatgardan ke karobar taur istemal kar rahe hain. आम अफ़गान शहरी मौजूदा तालिबान हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि ॾुखियाईनि जो शिकार आहे। अफ़गान तालिबान हुकूमत जो तर्ज़ अमल इस्लामी तालीमात मुताबिक़ न आहे। उहे फ़तवाऊं जारी करे मुसलमाननि खे क़तल कराईंदा आहिनि। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त अफ़गान तालिबान हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ऐं RSS जो नज़रियो साॻियो आहे। फितना हिंदुस्तान ऐं फितना ख़्वारिज जा सरपरस्त RSS ऐं हैबतुल्ला आहिनि। अफ़गान वज़ीर पंहिंजे पीउ भारत खे रिपोर्टूं ॾियण वेंदा आहिनि।
3: शहीद تو شہیدوں کے بارے میں جو کی جو انہوں نے کی آئی تھنک وہ ڈپلوریبل ہے, ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جیسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. جو آپ کے بہادر بچے
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them. Because that is how the democratic countries work, as per the constitution. Under the framework of law, where I started my presentation, that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. Or this country, jo ke good governance administration ke liye, better model ke liye baat karne ko tayar na aur ke kare jaye, karni chahiye. Let's find it, or will of the people ke mutabik isko resolve kar le.
2: नवन सूबनि या इंतज़ामी यूनिट्स बाबति मोहसन नकवीअ जो बयानु संदसि ज़ाती राय आहे। हुन बाबति फ़ैसिलो असांखे न पर अवाम खे करणो आहे। मुल्क जी आबादी चौण ते वधी वई, सूबा साॻिया ई चार आहिनि। 1972 ईस्वी में आबादी 7-8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे, त कुझु सोचणो पवंदो। आबादी एतिरी वधी आहे जो माण्हू फ़ैसिलो कंदा त अॻिते किन हलणो आहे। सुठी हुकमरानी लाइ इंतज़ामी रीसीट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR जो चवणो हो त आइन मुताबिक़ मसला हल करे सघजनि था, अवाम जी राय वठणु घुर्जे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन नाहे त आइन मुताबिक़ फ़ैसिलो करे। पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकमरानी इंतिहाई अहम आहे।

0: भी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें, जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो, यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक, यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिलीज फॉर्चून, नॉट इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया, हमारे आगे पैरों का हाथ नहीं लगाया जाए, हमसे बात करें, क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेडीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है।
1: बलोचिस्तान जा केतरा ई सरदार सिधी रीत दहशतगर्दी जो हिस्सो आहिनि, ही गैर कानूनी कारोबार जी परमिट ऐं सूबे जी बजट मां हिस्सो घुरनि था, चवनि था त हिस्सो न ॾींदो त दहशतगर्दी कराईंदा। उहे माण्हू लेवीज फोर्सिस खे बि पंहिंजी सरदारी फोर्स समझनि था, ही चाहिनि था त बलोचिस्तान अॻिते न वधे। निजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जा सबूत मीडिया खे ॾेखारे छॾिया। निजी ISPR जो चवणो हो त ॼाणी वाणी तासुर पखिड़ियो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि, दहशतगर्दनि सां ॻाल्हाइण जी का बि गुंजाइश मौजूद न आहे, दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि, ॿी सूरत में ख़तम कया वेंदा। बदकिस्मती सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं, हार्ड स्टेट जो मतिलब अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबरि हुजे, जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिब थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलबु आहे जिते का बि अशराफ़िया न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलबु हरगिज़ न आहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फ़र्ज़ आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।